ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, तदनुसार 9 जुलाई 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे

0: अविस्मरणीय बताया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। आज के चिंतन का विषय है भोजन हिताय भोजन सुखाय।
3: जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर

मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो। आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के दो चार कण हैं तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं। जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के दो चार छींटों से ही उन्हें नहलाइए। फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खानखाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में हैं सिर्फ दो पंक्तियां, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण। रहीम सोच में है। पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से भर दी। उसे धन की जरूरत थी, बेटी की शादी करनी थी, वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया। महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण है, हिंदू है, और खानखाना रहीम मुसलमान, पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी कुटिया में भी आए हैं, तुलसी ने उनका आलिंगन किया है, भव्य सम्मान दिया है अपनी कुटिया में। रहीम ने मोहरों की थैली भेंट की है और तुलसी के इनकार करने पर कहा है इसे रखना ही होगा, क्योंकि चित्रकूट में जो तुम संत सम्मेलन और भंडारा कर रहे हो उसमें इसे लगा देना, मैं भी उस सत्संग में भाग लेने जरूर आऊंगा। चित्रकूट में रहीम संत तुलसी के साथ बहुत दिन तक रहे थे, इसके प्रमाण भी हैं। एक दिन तुलसी ने चित्रकूट में एक हाथी को स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरी धरत निज शीश पर, कहु रहीम के ही काज। और रहीम ने चट जवाब में कहा।

0: जेहिरज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है, वह तो मानवता का उपासक होता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है त्याग, परोपकार, अहिंसा और दया। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कबीर, नानक, रैदास आदि संत फकीर हिंदू मुस्लिम धर्मकांडों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था, सांप्रदायिक भावना से एकता का खंडन होता है, वह राष्ट्र की जड़ को खोखला करता है, हिंसा और रक्तपात कराता है। उन्होंने एकता की डोर से उसे एक करने की कोशिश की। तभी तो कहा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो दाल हैं, को ज्यादा को कम। उन्होंने बार बार समझाया, राम रहीम एक हैं, उन्हें दो मत जानो। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने पर, स्वयं को सुधारने पर ही उन्होंने हमेशा जोर दिया, संपूर्ण मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। जात पात के भेदभाव से परे होकर जो मानवता को मानव धर्म मानता है, जो भिन्न और विरोधी मतों को एक एकता की सुदृढ़ डोर से बांधने का प्रयास करता है, वही संत है, वही मानव है और वही ईश्वर या अल्लाह के निकट है।
1: तो दोस्तों, ये था आज का चिंतन। FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदन।

दोस्तों, भी आपने सुना लखबीर सिंह लखा की आवाज में गाया ये भक्ति गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना कन्हैया मित्तल की आवाज में गाया ये भक्ति गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम भक्ति गीत अनुप जलोटा की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित्र मानस कांड की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 25 2-5

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

दोस्तों, भी आपने सुना श्री रामचरित्र मानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब आइए कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। 7 बजे का समय होगा लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग का। 7:20 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संगीत और प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात एवं 8:15 का समय होगा मॉर्निंग न्यूज का, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे प्रसारित किया जाएगा हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। प्रातः 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे का समय होगा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग का, और प्रातः 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4:30 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार जिन्हें रिले किया जाएगा हमारे राज्य केंद्र से। 5:02 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम किसान वाणी और 5:32 पर हमारे ग्रामीण भाइयों को संबोधित करता कार्यक्रम खेती बारी। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का और 6:02 पर आप सुनेंगे हमारे युवाओं को संबोधित करता कार्यक्रम युवानी। 6:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। संध्या 7 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल जिन्हें हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 7:15 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का। संध्या 7:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 जिन्हें हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का और 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी सभा समाप्त होगी। तो दोस्तों ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्याम ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवाद रोधी सहयोगम इतोपि सुदृढ़ीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम ह्यः नवदिल्ल्यां आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थान गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम लोकरंग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला लोक गीत सतेंद्र कुमार मिश्र और साथियों की आवाज में।

दोस्तों, भी आपने सुना सतेंद्र कुमार मिश्रा और साथियों की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत मंटू कुमार दांगी और साथियों की आवाज़ में।

सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोकरंग FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 7

0: 20 मिनट हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का विषय है थैलेसीमिया के कारण, लक्षण और बचाव। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम समाज की एक बहुत ही गंभीर बीमारी थैलेसीमिया पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसके बारे में अभी भी समाज के बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। इस गंभीर बीमारी को लेकर अभी भी हमारे बीच जागरूकता का अभाव है। समाज में थैलेसीमिया के प्रति लोग जागरूक हो, इस गंभीर बीमारी के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सके, इसके लिए आज के इस खास कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है हजारीबाग की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव को। तो मैडम, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद।
0: मैडम, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये थैलेसीमिया होता क्या है।
1: थैलेसीमिया एक खून की जन्मजात बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है, जो हीमोग्लोबिन बनता है, वो इफेक्टिव यानी सही तरीके से नहीं बनता है। कुछ तरह के प्रोटीन और जीन्स में बदलाव आने के कारण कुछ तरह के प्रोटीन कम बनते हैं, जिससे प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनने के कारण हमारा हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है या ब्लड सेल का नाश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड सेल, जिससे खून की कमी होती है। तो थैलेसीमिया इसी बीमारी को बोलते हैं जिसमें हमारी खून की कमी जन्मजात कारणों के कारण, जिसमें हीमोग्लोबिन सही ना बने, उस कारण होती है।
0: कह सकते हैं कि जो थैलेसीमिया है वो एक अनुवांशिक बीमारी है, माता पिता से उनके बच्चों में ये बीमारी का संचरण हो सकता है।
1: जी, थैलेसीमिया तीन प्रकार के होते हैं एक्चुअली, जिसमें माइनर एक होता है, इंटरमीडिया और मेजर होता है। तो माइनर हमारे बीच में काफी सारे, हम सब में हम लोग चेक करेंगे तो काफी सारे लोग माइनर होते हैं। और जब दो माइनर कपल, हस्बैंड वाइफ माइनर हो, तब बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का चांस होता है। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है।
0: और अगर तीसरे तरह के थैलेसीमिया की बात करें तो वो किस तरह का होता है?
1: जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया मेजर होते हैं, ये सीरियस बीमारी होती है। माइनर वालों को तो कभी जांच के बिना पता भी नहीं चलता है कि वो कैरियर है या माइनर थैलेसीमिया, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन 10 से 12 ग्राम के बीच हमेशा रहता है और कभी कभी 14-15 तक भी देखा गया है। पर जो इंटरमीडिया और मेजर प्रकार के होते हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट यानी उन्हें कई बार अपने जीवन काल में खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे जो सीवियर होता है वो थैलेसीमिया मेजर होता है, जो कि आपके जन्म से 5 महीने के बाद ही, जिसमें खून की कमी शुरू हो जाती है और 5 महीने की उम्र से ही उसे लगातार हर 15 से 20 दिन, 25 दिन में खून की आवश्यकता पड़ती है अपना हीमोग्लोबिन को 7 ग्राम के ऊपर रखने के लिए।
0: थैलेसीमिया से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके शरीर में किस तरह के लक्षण दिखलाई देते हैं?
1: थैलेसीमिया माइनर वाले, जैसे हमने बोला, कई बार उन्हें पता नहीं चलेगा, हल्के खून की कमी रहेगी, जिसको आयरन गोली खाने के बावजूद मरीज बोलेगा कि 10-11 ग्राम का खून रहता है, हम आयरन हमेशा खाते हैं तब भी। तो ये भी एक थैलेसीमिया माइनर का लक्षण है। पर जैसे बताया हमने, मेजर जो होता है उसमें इतनी खून की कमी होती है कि वो ब्लड चढ़ाए बिना नहीं पूर्ति होती है, उसमें कुछ भी नहीं और काम करता है। तो जनरली मेजर वाले मरीज 5-6 महीने की उम्र पे ही सीवियर एनीमिया, पीलिया हो जाना, इससे प्रेजेंट करते हैं। उनके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, चेहरे की बनावट में बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि शरीर कोशिश करता है कि जो और ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाने का और ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाने का। तो उसके कारण शरीर में माथा चौड़ा होना, नाक की बनावट में बदलाव आना, बचपन से ही ये सारे चेंजेस दिखने शुरू होते हैं। और मेन होता है कि खून की कमी होती है, 4 ग्राम 3 ग्राम बार बार हो जाएगा खून, तो बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है इन बच्चों को। पीलिया भी लगातार इनमें बना रहता है। धीरे धीरे बड़े होने के साथ लीवर बड़ा हो जाता है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है इन बच्चों का, तो इस तरह से ये, और ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इसके इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जो इंटरमीडिया वाले होते हैं वो कई बार 5 या 6 साल या 10 साल की उम्र से उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ती है, और बचपन में तुरंत नहीं पड़ती है। कई बार लड़कियों में मासिक शुरू होने के बाद ब्लड की जरूरत पड़ने लगती है, तो इनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्यों खून की कमी हो रही है। तो एक्चुअली कभी भी खून की कमी अगर हो रही है और हमें कारण ना समझ में आए, तो एक थैलेसीमिया के बारे में मन में सोच के रखना चाहिए और उसके लिए जांच कराना चाहिए।
0: आपने काफी अच्छी बात बताई कि अगर शरीर में लगातार खून की कमी हो रही, तो एक बार हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर ब्लड की जांच जो है जरूर करवानी चाहिए। उसमें जो होमोग्लोबिन है

0: की जांच अवश्य करानी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम कहीं थैलेसीमिया से पीड़ित तो नहीं हैं।
1: जी, थैलेसीमिया के लिए केवल हीमोग्लोबिन जांच से जानकारी नहीं मिलती है, HPLC ये जांच का नाम है, HPLC जांच जो हीमोग्लोबिन का होता है उससे पता चलता है। सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं, एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में सिकल सेल एनीमिया उतना ही कॉमन है, जो भी एक खून की कमी होती है जिसमें और एक सिम्टम होता है कि जॉइंट पेन्स, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस कई बार लोग सोचते हैं उसको, तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ये दोनों ही काफी कॉमन है। और हर तरह का हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी जो है वो HPLC नामक जांच से पता चलती है, जो कि एकदम भी महंगी जांच नहीं है। पहले हमारे झारखंड सरकार ने उसे केवल 100 रुपए में यहाँ हजारीबाग में भी शुरू किया था सदर अस्पताल में करवाना, पर फिर वो सक्सेस नहीं किया। पर अभी भी मैक्सिमम जगह केवल 400-500 रुपए में ये जांच हो जाती है, जो हमें बताती है कि जो तरह के हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, HBS, किस तरह का हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में है। तो HbA2 जो हीमोग्लोबिन है अगर वो बढ़ता है 4 से ज्यादा, तब हम लोग थैलेसीमिया के लिए हम शंका करते हैं कि उसमें है।
0: आगे मैडम हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में थैलेसीमिया बीमारी के इलाज की क्या संभावना है।
1: इलाज अभी फिलहाल जिंदा रखने के लिए ब्लड चढ़ाया जाता है, बार बार ब्लड के चढ़ने के कारण आयरन ओवरलोड, शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फिर एक्सेस जो आयरन होता है वो लीवर को डैमेज करता है, दिल को डैमेज करता है, हार्ट में चेंजेस आते हैं। तो ये इमीडिएट बचाव के लिए होता है कि हाँ खून चढ़ाया और आयरन चेलेशन थेरेपी, जो आयरन को, एक्सेस आयरन को शरीर से निकालता है, वो थेरेपी चलाई जाती है। डेफिनेट जो ट्रीटमेंट है अभी आना शुरू हुआ है, जिसमें सबसे सक्सेस जो रहा है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं, जो सक्सेस करता है अगर अच्छा आपको मैच डोनर मिल जाए। जनरली वो अपने भाई बहन होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जिनसे HLA टाइपिंग मैचिंग की जाती है, और फिर वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें ये सक्सेस देखा गया है काफी अच्छा। और आजकल कई देशों में जीन थेरेपी भी आ गई है, जिसमें मॉडिफाई करके जीन डाले जाते हैं कि सही हीमोग्लोबिन बन सके। तो ये दोनों ही थेरेपी हैं जो डेफिनेट ट्रीटमेंट हैं, जो आपका पूरा पूरा इलाज है। और फिर अगर डेफिनेट थेरेपी नहीं कराएं तो जितने दिन ब्लड चढ़ाएं, आयरन चेलेशन थेरेपी दें, जितने दिन आदमी जिंदा रहे उस पे।
0: थैलेसीमिया से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं?
1: बचाव के लिए जैसे एक सेइंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव आपको पहले सोचना है। एक बार बीमारी हो गई तब तो फिर उसके इलाज में घुसना है, और इलाज में ये सिर्फ एक व्यक्ति का इलाज नहीं होता है। एक्चुअली थैलेसीमिया या कोई भी हीमोग्लोबिन की जो बीमारी है ये एक पूरे परिवार को अपने उसमें ले लेती है, क्योंकि पूरे परिवार का हर समय ब्लड बैंक जाना, ब्लड अरेंज करना, ब्लड चढ़ाना, हर महीना अस्पताल जाना, इस उसमें जीना कि बच्चा 15 साल या 20 साल का होके फिर आगे नहीं रह पाएगा, तो ये एक पूरे परिवार को ही वो करता है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि ये क्योंकि अब है हमारे पास इस चीज की साइंस, तो हमें अब बचाव पे देना चाहिए। इसमें जो हम बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, इंडिया में बहुत कम जगहों पे उपलब्ध है। तो हमेशा हमें बचाव पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। बचाव के लिए हमें बस माँ बाप, यानी कि जब भी एक कपिल शादी ब्याह होती है या जब प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करता है, तो एक जैसे बताया HPLC जांच बहुत ही सस्ती जांच है, हस्बैंड वाइफ दोनों को करवानी चाहिए। दोनों में अगर कैरियर स्टेटस निकलता है कि हाँ हम दोनों कैरियर हैं उस चीज के लिए, तो उन्हें पहले डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, आइडियली प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले। पर ये हमारे समाज में बहुत होता नहीं है, जनरली प्रेगनेंसी के बाद ही आती हैं महिलाएं, तो उस समय जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉक्टर के साथ, तो उस समय ये जांच कर लेनी चाहिए, हमें पता चल जाए हाँ अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कैरियर हैं, तो हम पेट के अंदर जो बच्चा, जो भ्रूण है, उसकी जांच करते हैं जानने के लिए कि उसमें मेजर थैलेसीमिया या मेजर कोई हीमोग्लोबिन की बीमारी तो नहीं गई है। अगर ये जांच हम 5 महीने के अंदर हमारे पास मरीज आ जाए, हम सब जांच कर लें, तो ये जांच करके हम लोग बता देते हैं कि हाँ आपके बच्चे में ये बीमारी गई है, उसे इसमें ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी बर्थ से ही स्टार्टिंग, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस भ्रूण को, फिटस को 20-22 हफ्ता के पहले हटा सके, अबॉर्ट कर सके, जो कि लीगली भी अलाउड है कि हमारे पास अगर ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चे के लिए, तो परिवार उसे हटा सकता है। ये जितनी जल्दी हो, दूसरे महीने, तीसरे महीने में तो और अच्छा होता है कि हम तीसरे महीने में ही पता कर लेते हैं। CVS नामक एक जांच होती है जिसमें अंदर से हम सैंपल निकालते हैं पेट से, बच्चे का टेस्ट करते हैं जीन्स का, और बता देते हैं कि हाँ इसमें ये बीमारी है या नहीं है। आइडियली ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के शुरुआत में करनी चाहिए, क्योंकि एक बार एडवांस प्रेगनेंसी हो जाती है 6-7 महीना, तो जांच करके बताने के बावजूद हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते। हम 10 साल से यहाँ पे हजारीबाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं लोग जो कि दूर देहात

0: गांव से आ रहे जिनके चार बच्चे पांच बच्चे में थैलेसीमिया, और जो ये कहते कि उन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि हम इसे पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी के पहले, मतलब ये जानकारी का अभाव था डॉक्टरों के बीच भी, मरीजों के बीच भी, लोगों के बीच भी, कि उन्हें पता ही नहीं था कि चार पांच बच्चे जिनमें से एक को वो ब्लड चढ़ा के जिंदा रखें और पांच बच्चों को उन्होंने जाने दिया कि भाई अब नहीं हम ब्लड चढ़ा सकते हैं इतना। तो इसीलिए जानकारी बहुत अवश्य है, अगर आपकी डॉक्टर नहीं बता रही है तो आप में जानकारी, आप जाके बोलिए नहीं हम प्रेग्नेंट है, हमें ये सारी जांचें करानी है कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये तीन प्रदेश है जहाँ पे 11 से 12% पॉपुलेशन यानी हर 10 में से एक आदमी थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है। तो जब तक हम अपनी जांच नहीं कराएंगे वो हमें नहीं पता चलेगा कि हम अपने बच्चे में कोई मेजर बीमारी को पास ऑन कर रहे हैं।
1: और अंत में मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति थैलेसीमिया से पीड़ित है उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली ब्लड डोनेशन करना हमारे स्तर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नागरिक के तौर पे, कि हम रेगुलर इंटरवल पे अगर स्वस्थ हैं तो हर 3 महीने 6 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाके या ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक्स में जाके ब्लड डोनेशन रेगुलर करें, क्योंकि इन व्यक्तियों को जो थैलेसीमिया पीड़ित है ये केवल ब्लड के ही बेसिस पे जिंदा रहते हैं और इन्हें हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में प्रति वर्ष 15,000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे पैदा होते हैं और इन 15,000 बच्चों को सोच लीजिए हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, किसी को 15 दिन पे भी, तो इतनी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने स्तर पे हम उसके बारे में ज्ञान बढ़ा सकते हैं, उसकी जानकारी लोगों में बढ़ा सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं।
1: और अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को थैलेसीमिया के बचाव से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगी।
0: हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी बीमारी जब हम टीवी या इस पे देखते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इससे बचे हुए हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किन जेनेटिक बीमारियों के हम कैरियर हैं, क्योंकि अधिकतर कैरियर स्टेटस वाली बीमारी हमारे सामने नहीं दिखती हैं जब तक वो मेजर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करे, जनरली जब हस्बैंड वाइफ कैरियर हो। तो इसलिए एक तो हमें ये नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि नहीं ये मेरे परिवार में पहले कभी नहीं हुआ है, ये आगे नहीं हो सकता है, मेरे परिवार में कोई जेनेटिक बीमारी नहीं। तो इसकी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जेनेटिक बीमारियां अक्सर पहले स्तर नई पीढ़ी में ही प्रेजेंट करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पहले से परिवार में पीढ़ी में आ रही है तभी वो, उस तरह की भी बीमारियां होती हैं पर मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं वो फर्स्ट जनरेशन में ही प्रेजेंट करती हैं जब हस्बैंड वाइफ उसके कैरियर होते हैं। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, थैलेसीमिया बहुत कॉमन है, अनकॉमन बीमारी नहीं है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो नवविवाहित कपल्स हैं उन लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमें जब प्रेगनेंसी प्लान करना है या प्रेग्नेंट हुए हैं तो जरूर शुरुआत में ही डॉक्टर के पास जाएं। अक्सर लोगों का होता है कि नहीं 4 महीना बीतेगा तब चलेंगे, अरे 3-4 महीना में नहीं मिलना, ये एक गलत है। आइडियली आपको प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर से मिलके सारी जांच करा के फॉलिक एसिड की दवा शुरू करके तब प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, तब आप मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस या गड़बड़ियों को अवॉइड कर सकते हैं। और एक ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों से जो स्वस्थ हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के आए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि हाँ ब्लड डोनेशन रेगुलर करें, जिससे इन बच्चों को, इस तरह के परिवारों को मदद मिल सके।
1: मैडम आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ी और थैलेसीमिया से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतने महत्वपूर्ण संदेश हमारे श्रोताओं के बीच आपने साझा किया, इसके लिए एक बार फिर से हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण। विषय था थैलेसीमिया के कारण, लक्षण और बचाव, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत संगीत।

कार्यक्रम गीत संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत बी प्राक और सुनंदा शर्मा की आवाज में।

उसे भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर

0: να μέρει λελίκτε. Να το μια και λελίκτε, να μέρει λελίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίκτε.
1: दोस्तों भी आपने सुना बेपराक और सुरंदा शर्मा की आवाज में ये गीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा नेहा कक्कड़ की आवाज में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

दोस्तों, भी आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और फिर मॉर्निंग न्यूज एवं 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से।

0: एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की

0: खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र

0: 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Papadkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू

0: होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
0: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
0: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
1: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing, and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian Super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashvani News, Melbourne.
1: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. The Prime Minister thanked the Indian community in Melbourne for the warm welcome accorded to him, describing the reception as truly unforgettable. Braving that winter chill, members of the Indian diaspora gathered in large numbers outside the Prime Minister's hotel, greeting him with chants of Bharat Mata Ki Jai and Modi Modi. The welcome also featured cultural performances by local artists. The Prime Minister also praised the Australian India Orchestra for its rendition of Maa Tujhe Salaam, saying the performance reflected the role of music

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:23 हुए हैं और अब समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक कंपनियों के साथ की बैठक, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इटकी टीबी सैनिटोरियम का किया निरीक्षण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और पुरानी पहचान लौटाने का दिया निर्देश। बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह पटना से गिरफ्तार, रांची की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में। खूंटी में 5 वर्षों से फरार पीएलएफआई उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, IBM और AWS जैसी दुनिया की शीर्ष तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार झारखंड को नवाचार आधार

0: आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: आप सबको मालूम है कि वर्तमान में परिवर्तन का दौर है, कई चीजों पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा। चूंकि हमारे राज्य में मुख्य रूप से माइनिंग आधारित अर्थव्यवस्था में रहे, आज माइनिंग से ऊपर निकलने का, माइनिंग से बाहर निकलकर नॉलेज बेस विकास में कदम रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
0: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के इटकी स्थित ऐतिहासिक टीबी सेनिटोरियम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना और मरीजों को मिल रहे उपचार की विस्तृत समीक्षा की। संजय सेठ ने सेनिटोरियम के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और संस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं व संसाधनों में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग के चौपारण स्थित बिरहो टोला में केंद्र सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस मुख्य उद्देश्य आदिम बिरहोर समुदाय, अनुसूचित जनजाति और वंचित परिवारों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। शिविर में ऑन स्पॉट आवेदन सहायता देकर अंतिम व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया।
2: अपना बच्चा का आधार कार्ड बनवाने आए थे और अपना स्वास्थ्य जांच करवाने, अपना बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन, उसी का मतलब दवा ली।
3: हम यहाँ पे बच्चा का आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। फिर ये जॉब कार्ड में नाम है कि नहीं है उसको जांच करने के लिए आए हैं। जॉब कार्ड से बहुत फायदा है भी।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है।
4: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: झारखंड सीआईडी ने बोकारो के तेतुलिया मौजा में से 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रांची लाया गया, जहां अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 16 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और बहुड़ा यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने को कहा गया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। आपातकालीन सेवाएं भी मुस्तैद रहेंगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने 5 वर्षों से फरार PLFI उग्रवादी तोपाल मुंडा को मुरहू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह अपनी पहचान छिपाकर सामान्य जीवन जी रहा था और ड्राइवर का काम कर रहा था। उसके खिलाफ पुलिस मुठभेड़, फायरिंग और 17 CLA एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सिमडेगा की पाकड़ टाड़ थाना पुलिस ने कोरोना काल के आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन मामले में पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहे 8 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SDPO धर्मदेव पासवान के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है। रामगढ़ के भुरकुंडा में पुलिस ने पंचायत भवन के पीछे चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच कर रही है।

0: रही है।
1: गोरबंडा ओपी अंतर्गत अवैध हथियार के निर्माण और उसकी तस्करी के संदर्भ में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विगत रात्रि दिनेश विश्वकर्मा के घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में अपराधकर्मी दिनेश विश्वकर्मा के घर पर अवैध हथियार निर्माण की इकाई का पर्दाफाश हुआ है और घर की विधिवत तलाशी के क्रम में अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कई सामग्रियां सबको बरामद किया गया है।
0: गोड्डा के कारगिल चौक स्थित बंगाल ज्वेलर्स में कल शाम तीन नकाबपोश अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग कर करीब 30 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। घटना के विरोध में पूर्व विधायक अमित मंडल और स्थानीय स्वर्णकारों ने आज गोड्डा बाजार बंद रखने का आह्वान किया है।
2: 7 बजे शाम में अगर इस तरह की घटना घटेगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य गोड्डा के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं पुलिस से भी मांग करता हूं, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मांग करता हूं कि त्वरित गति से जो भी कल्प्रिट है, दोषी है, उसको गिरफ्तारी हो। और पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं, ये काफी चिंता का विषय दिखने को मिल रहा है।
0: राज्य के पुलिस महानिदेशक आज रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आयोजित पासपोर्ट सेवा दिवस के विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस गरिमामयी समारोह में पासपोर्ट सेवाओं को सुगम बनाने और सुरक्षा सत्यापन प्रक्रियाओं में तेजी लाने से जुड़े प्रयासों पर चर्चा होगी। रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने गरज चमक के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मॉनसून थोड़ा कमजोर रहेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर झारखंड की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, माइंड से माइंड्स की ओर बढ़ेगा झारखंड, एआई पर फोकस। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची संघ कार्यालय पर हमले में देश भर में एनआईए छापे। प्रभात खबर लिखता है, वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद लेकिन सरकार के कार्यक्रम से रखी दूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमीन माफिया को लाभ दिलाने के लिए डीसी की सही रिपोर्ट को पलट दिया था कमिश्नर ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक कंपनियों के साथ की बैठक, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इटकी टीबी सैनिटोरियम का किया निरीक्षण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और पुरानी पहचान लौटाने का दिया निर्देश। बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह पटना से गिरफ्तार, रांची की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में। खूंटी में 5 वर्षों से फरार पीएलएफआई उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: साथियों, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम है लोकरंग, आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत सोनू निगम और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म बादल से।

दोस्तों, भी आपने सुना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म बादल से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाए इसी खूबसूरत से गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में बार बार देखो फिल्म का गीत। कुमार ने उसे लिखा था, अमाल मलिक का संगीत। और चित्रलोक में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमें परहेज लंबे समय तक करना पड़ता है और कभी कभी जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा लगता है, बिल्कुल मन नहीं मानता और ये लगता है कि क्यों हम ये सारी चीजें नहीं खा रहे या क्यों हमें ये सारी चीजें करना है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए परहेज की आवश्यकता है और कभी कभी वो इससे उकता जाते हों, तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप उन्हें कभी कभी उनकी पसंद की चीजें सप्ताह में या महीने में एक बार दे सकते हैं। ऐसा कई बार डॉक्टर अगर बहुत ज्यादा ही परेशानी की स्थिति ना हो तो वो ऐसा कहते हैं कि आप उन्हें इतनी क्वांटिटी में वो चीजें दे सकते हैं, तो उस ही मात्रा में ये सब चीजें आप दे सकते हैं। और जीवन यूं भी उन पर काफी कड़ा है, तो आप थोड़ा नरमी रखिए उनके साथ, समझाइए मत उन्हें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप समझाने पर जाते हैं तो मामला जरा बिगड़ सकता है। उसकी बजाय उन्हें सुनिए उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बेहतर मदद साबित होती है। और अगर हो सके तो परिवार के दूसरे सदस्य भी इस परहेज में सहयोग करें, लेकिन कुछ ऐसा परहेज हो जिससे दूसरे परिवार के सदस्यों को करने से उन्हें स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं तो ना करें, पर जो भी परहेज उनके साथ आप कर रहे हैं उसे एहसान की तरह मत दिखाएं। तो जितनी सहजता से ये बातें होंगी उतनी ही आसानी भी होगी।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इरशाद कामिल ने से लिखा, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में बात हो रही स्वास्थ्य और परहेज की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परहेज की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको परहेज करना आवश्यक हो गया हो तो इसे मन पर हावी मत होने दें, क्योंकि कई बार लोगों की बातों का केंद्र बिंदु ही ये बात बन जाती है कि ये सारी चीजें हम नहीं खा सकते, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उन चीजों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप खा सकते हैं, जो चीजें आपके लिए अनुकूल हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये बात तो उस ज्ञान की तरह लगेगी जो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन काम तो यही आता है। तो एक और ज्ञान हम देते चलें कि भाई मन के अनुसार आप मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। तो ये कीजिए और देखिएगा फिर आपका मन कितना खुश रहता है।

डैंग डैंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अनविता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और हमारा स्वास्थ्य भी कुछ इसी तरह से थोड़ी सी कहते परहेज मांगता है या थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहता है ताकि हम उसी ओर जाएं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और इस परहेज को छोड़ने की जब बातें हम करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें आज कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं सोचनी है, तो वो चीजें जो हैं बाद में जाकर परेशानी तो करती ही हैं। तो क्यों ना खुशी खुशी कीजिए भाई, परहेज तो करना ही है, तो रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए, तो बेहतर है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य की ओर अपना अच्छा कदम बढ़ाइए और हंसते खिलखिलाते बढ़ते हुए चलिए। तो आज ही कीजिए शुभारंभ इस बात का।

काई पोचे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रुति पाठक, दिव्य कुमार की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और इतनी देर हमने बातें की अच्छे स्वास्थ्य और उसके लिए किए जाने वाले परहेज की, तो यकीन मानिए आपका और हमारा हाल एक ही है, पर एक दूसरे को इस तरह संभालते हुए आप और हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे। और गीतों का साथ तो है ही, तो आज जो भी आज से अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये गीत, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी अच्छे स्वास्थ्य के फैन हैं।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म का गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दिन भर जहां भी रहें रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने

भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।

0: तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।
2: भंवरा बड़ा नादान है, बगिये

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा

वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थीं कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थीं और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ के रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और ना ही मैं तुम्हारे सुख बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी? समझा,
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वैसी ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग के खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी

0: प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई, जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं? जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटे।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला। पहले किसी काबिल हो ले, फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो यहाँ से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहबीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो

0: एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज़ है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा, ये कैसे गाना होगा? तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है। ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मतलब और बढ़िया दिखती थी।
1: बेकरार दिल

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश, जंपेरिया।

0: अरे बेटा सुन, इस चमकी में बड़े बड़े गुण, सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चमकी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए चाहे घबरा।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
2: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था
3: अच्छा?
2: मुझको
3: तो ये शायर भी हैं?
4: शायर
2: बड़ी,
4: अरे तू देखती रही उसकी कुछ पांच से नज़मे उसके सर के पीछे पड़ी हैं।
2: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां।

फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

आज के फनकार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।

कार्यक्रम हेलो हजारी बाग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने शहर हजारीबाग से जुड़ी गतिविधियों के साथ। आपको बतला दें कि हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार से डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू कर दिया है। इस मौके पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, प्रभात फेरी और जागरूकता रैली भी निकाली गई। इसकी शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की। इसके साथ एसीएमओ डॉक्टर शशि जायसवाल, डीएमओ डॉक्टर कपिल मुनि प्रसाद, डीआरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष प्रसाद शामिल थे। यह कार्यक्रम सदर अस्पताल सा उत्क्रमित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आयोजित हुआ। बताया गया कि यह पखवाड़ा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इस अवसर पर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन कार्यशाला सभागार में भी किया गया। कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य डायरिया की जानकारी देना है। ORS और जिंक के समय

समय पर उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और दोस्तों, इधर हजारीबाग पुराने बस स्टैंड के समीप मंगलवार देर रात दोपहिया वाहन की पार्किंग को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने सिद्धार्थ कुमार सिंह नामक युवक पर जानलेवा नियत से धारदार हथियार और बेल्ट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में सिद्धार्थ बुरी तरह लहूलुहान हो गया, वह गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने दबिश देकर हमले के तीन मुख्य आरोपियों आकाश यादव, कौशल पाठक और समीर सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपको बतला दें कि हजारीबाग में मिलावटी पनीर और बेसन का कारोबार बेरोक टोक जारी है। जिले में अधोमानक पनीर की बिक्री की जा रही है। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर के तीन सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, ये तीनों ही अधोमानक निकले। पनीर ही नहीं, बेसन में भी मिलावट की जा रही है। जांच में बेसन भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, इसमें भी मिलावट की शिकायत पाई गई है। साथ ही साथ सॉस भी खाने योग्य नहीं था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरही से स्वादो कंपनी के सॉस का सैंपल प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा था, जांच में वह खाने योग्य नहीं मिला। और दोस्तों, इधर हजारीबाग नगर निगम की साधारण बोर्ड बैठक बुधवार को नगर निगम सभागार में संपन्न हुई। बैठक में शहर की पेयजल व्यवस्था, सड़क नाली निर्माण, वित्त आयोग की योजनाएं, जल संरक्षण, अतिक्रमण, मॉनसून की तैयारियां सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। विकास योजनाओं के कार्यस्थलों पर अनिवार्य सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी, अन्य अनियमितताओं पर सदन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। दोस्तों, हजारीबाग बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में सीनियर ब्रांच मैनेजर विपिन कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक दिवसीय ग्राहक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों, छोटे व्यवसायियों और बैंक ग्राहकों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। दोस्तों, हजारीबाग से जुड़ी और भी ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरों को हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हजारीबाग की खबरों में आगे हम आपको बतला दें कि जिले वासियों को लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय के अब चक्कर नहीं काटने होंगे। परिवहन विभाग के तत्वाधान में जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग डीसी हेमंत सती के निर्देश पर इन कैंपों के माध्यम से आवेदकों की सुविधा के लिए ऑन द स्पॉट आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कैंप में मिलने वाले आवेदनों की स्क्रूटनी कर बायोमेट्रिक कैप्चर, फोटो एवं हस्ताक्षर लिए जाएंगे। कैंप में ही ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट होगा। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। दोस्तों, आपको बतला दें कि कटकम सांडी प्रखंड में 14 जुलाई, पद्मा में 21, दारू में 28 जुलाई व डांडी में 4 अगस्त को कैंप लगेगा। इसी प्रकार केरीडारी में 11 अगस्त, चलकुसा में 18, विष्णुगढ़ में 25, टाटीझरिया में 1 सितंबर, बरकट्ठा में 8 सितंबर, चौपारण में 15, बरही में 21, कटकम दाग में 29 सितंबर को कैंप लगेगा। इचाक में 6 अक्टूबर, भड़कागांव में 13 अक्टूबर और सदर प्रखंड में 21 अक्टूबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी कैंप पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन के द्वारा सभी संबंधित आवेदकों से समय पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई है। आगे दोस्तों, आपको बतला दें कि सांसद मनीष जायसवाल ने सांसद खेल महोत्सव 2026 के तहत आयोजित होने वाले नमो फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर व्यापक स्तर पर पहल तेज कर दी है। आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने को लेकर हाल में ही उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन समिति से जुड़े लोक संघ बैठक की। वहीं बुधवार को सांसद ने न्यूरिया स्थित स्ट्रेचिंग सेंटर पहुंचे, जहां पर टूर्नामेंट के लिए तैयार की जा रही आकर्षक नमो जर्सी की प्रिंटिंग और स्ट्रेचिंग कार्य का निरीक्षण किया।

और दोस्तों आगे हम आपको बतला दें कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा 16 जुलाई को पहली बार हजारीबाग में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का दिव्य पहाड़ी अनुष्ठान होगा, जिसका प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के हल्दिया से आने वाली विशेष टीम करेगी। आयोजकों के अनुसार इस अनुष्ठान में भगवान को विशेष शैली में झूमते हुए गर्भगृह से रथ तक लाया जाएगा। पहाड़ी के दौरान भगवान को दिव्य प्रतिमा की ऊंचाई 7.5 फीट से अधिक होगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आरंभ होगी। रथ यात्रा पीटीसी चौक से निकलकर पुलिस अधीक्षक आवास, सर्किट हाउस, जिला परिषद, पुराना बस स्टैंड, लोक निर्माण विभाग चौक और हॉली क्रॉस होते हुए पुनः पुलिस अधीक्षक आवास मैदान पहुंचेगी। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुबह दस बजे से रात 10 बजे तक महाप्रसाद की व्यवस्था की जाएगी।

0: हों।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उसके पहले आइए हम आज के इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय जल संकट से निपटने में कैच द रेन अभियान की भूमिका पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहा गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यह पंक्ति आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी भूजल का लगातार गिरता स्तर तो कहीं पेयजल की कमी। ये संकेत है कि यदि हमने जल संरक्षण को अपनी आदत नहीं बनाया तो आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी सोच के साथ शुरू किया गया है कैच द रेन अभियान, जो हमें प्रेरित करता है कि जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, बारिश के पानी को वहीं संचित करें। दोस्तों, यह अभियान जल संकट के निकटने में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, जल जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कृषि, सभी का अस्तित्व जल पर ही निर्भर है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, अनियोजित विकास, भूजल का अत्यधिक दोहन और वर्षा जल के संरक्षण की उपेक्षा ने जल संकट को गंभीर बना दिया है। आज देश के अनेक क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में पेयजल तक उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे समय में कैच द रेन अभियान आशा की एक मजबूत किरण बनकर सामने आया है। इसका उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सहेजना और धरती के भीतर पहुंचाकर भू जल स्तर को बढ़ाना है। इसके तहत तालाबों, कुओं, पोखरों, चेक डैम, जलाशयों और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण एवं पुनर्जीवन किया जा रहा है। दोस्तों, इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है जन भागीदारी। जब गांव का हर व्यक्ति, हर परिवार, हर विद्यालय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय प्रशासन मिलकर जल संरक्षण का संकल्प लेते हैं, तब यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप लेता है। यदि हम अपने घरों की छतों

0: पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें, पुराने जल स्रोतों की सफाई करें, तालाबों और कुओं का संरक्षण करें तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो हम न केवल अपने क्षेत्र में जल संकट को कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है। भूजल स्तर बढ़ने से सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, किसानों की लागत कम होगी और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही सूखे की स्थिति में भी जल उपलब्ध रहने से ग्रामीण जीवन अधिक सुरक्षित बनेगा। तो दोस्तों, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी का सामाजिक और नैतिक दायित्व है। आज आवश्यकता है कि हम जल को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार मानते हुए उसकी हर बूंद का सम्मान करें। तो दोस्तों, आइए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह संकल्प लें कि वर्षा की हर बूंद को हम सहेजेंगे, जल का सदुपयोग करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, आज बचाया गया पानी कल की सबसे बड़ी पूंजी है और सच ही कहा गया है, जल है तो कल है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार भूमि में जल का स्तर जो है वह गिरता जा रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। आइए इसी विषय पर सुनते हैं एक वार्ता।
1: भौम जल का गिरता स्तर और जल संकट। जल ही जीवन है, हम यह हमेशा सुनते और कहते आए हैं। जल हमारे एवं हर जीव की आवश्यकता है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन के हर कार्य को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम जल का प्रयोग सिंचाई, औद्योगिक कार्य, शक्ति संसाधन के रूप में एवं अन्य कार्यों में भी करते हैं। इसके अलावा हम जल का प्रयोग अपने आम दिनचर्या में पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, घर की स्वच्छता, स्नान एवं आदि कार्यों में प्रयोग करते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए जल एक बहुत ही आवश्यक संसाधन है। अगर जल नहीं हो तो खेती नहीं होगी और बिना खेती के फसल नहीं होगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में लगभग हर कार्य जल पर आधारित है। हमारे शरीर का आधे से अधिक वजन जल से ही बनता है। हमारे शरीर में लगभग 60% जल होता है। मेडिकल रिसर्च एवं अन्य गाइडलाइनों की माने तो सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 8 ग्लास यानी 2 लीटर पानी पीना चाहिए। जल हमारे पृथ्वी पर मौजूद एक बहुमूल्य संसाधन है। हमारी धरती का लगभग 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से 97% पानी खारा है। यह खारा पानी पीने योग्य नहीं होता। हम इस 3/4 हिस्से से केवल 3% पानी को अपने उपयोग में ला सकते हैं। इस 3% पानी में भी 2% हिस्सा ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इसका मतलब है कि सिर्फ 1% पानी ही हमारे उपयोग हेतु उपलब्ध है। इस 1% में नदी, झील व तालाब एवं भौम जल आता है। नदियों के पानी से बिजली उत्पादन, खेती व अन्य कार्य किए जाते हैं। झील व तालाबों का पानी हम शुद्ध करके पीते हैं और खेतों में लगे फसलों की सिंचाई करते हैं। लेकिन नदी तालाब सभी जगह नहीं होते। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके विकल्प खोजने पड़ते हैं। इस विकल्प की पूर्ति के लिए हम लोग गहरी खुदाई कर भौम जल प्राप्त करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आखिर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। भौम जल या भूगर्भिक जल वह जल है जो वर्षा के उपरांत मिट्टी से रिसता हुआ धरती के गर्भ में जाकर जमा हो जाता है। भौम जल मीठे पानी का एक प्राकृतिक साधन है। मानव इसी भौम जल को प्राप्त करने के लिए गहरे कुएं और नलकों का प्रयोग

करता है। यह भौमजल बिना शुद्ध किए भी साफ व पीने योग्य होता है। हमारे धरती की ऊपरी परत कई सतहों से बनी है और इनसे रिसता हुआ पानी भूगर्भ में पहुंचने तक शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह छनता हुआ वहां तक पहुंचता है। वर्षा के उपरांत जल सबसे ऊपरी सतह, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, उससे रिसता हुआ टॉप सॉइल में आता है। वहां से रिसता हुआ और छनता हुआ वह सब सॉइल में पहुंचता है। इसके आगे यह पानी वेदर्ड रॉक नामक सतह में पहुंचता है। यहाँ कई छोटे छोटे कंकड़ व पत्थर होते हैं। यहाँ पर यह रिसता पानी और भी ज्यादा छन जाता है और तब आखिर में यह शुद्ध पानी बेडरॉक नामक सतह, जो कि एक चट्टान की तरह ठोस है, वहां जाकर एकत्रित हो जाती है। इस जल का कुछ हिस्सा बेडरॉक में स्थित दरारों में भी छनकर रिस जाता है। यह पानी की सतह जो बेडरॉक के ऊपर वह दरारों में एकत्र होती है, उसे हम भौम जल कहते हैं। इस शुद्ध एवं स्वच्छ भौम जल का प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए यह जल स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार हम इस भौम जल का उपयोग कर रहे हैं, यह सतह घटती जा रही है। हम इस भौम जल का उपयोग हमारे घरों के काम में तो ला ही रहे हैं, किंतु आज कई उद्योग व कारखाने भी इस भौम जल को अपने उपयोग में काफी बड़ी मात्रा में ले रहे हैं। मोटरों द्वारा पानी को बड़ी मात्रा में भौम जल की सतह से निकाला जा रहा है, इससे भौम जल की सतह घटती जा रही है। अफसोस की बात यह है कि इस गति से यह स्तर घट रहा है, उस गति से बढ़ नहीं पा रहा। इसके जिम्मेदार भी हम सभी हैं। जब इस पानी के स्रोत की बात आती है, हम सब इसे उपयोग में लेना चाहते हैं, पर इसके हित के लिए कुछ नहीं करते। यह सतह मुख्य रूप से वर्षा के पानी पर आश्रित है। वर्षा के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है, यह तो हम सब जानते हैं, क्योंकि पेड़ ही मेघों को लाते हैं। लेकिन जिस गति से हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम उसी तरह पेड़ लगा नहीं रहे, वर्षा के संसाधन को कम कर रहे हैं। इस तरह भौम जल कैसे बढ़ेगा? यदि वर्षा ही कम मात्रा में होगी तो भौम जल का स्तर भी कम बढ़ेगा। इसमें भी जो वर्षा हो रही है, उसका सारा पानी जो रिसना चाहिए, वह हमारे फैलाए भूमि प्रदूषण की वजह से रिस ही नहीं पा रहा। साथ ही जो कंक्रीट जंगल हमने फैलाया है, उससे भी पानी को भौम जल सतह तक रिसने में असुविधा हो रही है। जो पानी वर्षा के रूप में रिसने का प्रयास करती है, वह भूमि में दबे कूड़े जैसे प्लास्टिक और अन्य कचड़ों में फंसकर रह जाती है, क्योंकि पानी उसे पार नहीं कर सकती। साथ ही हमारा कंक्रीट जंगल, यानी हर जगह कंक्रीट की सतह होते जा रही है, जिससे पानी रिस नहीं सकता। इससे मिट्टी की सतह, जहां से पानी रिसता है, वह कम हो रहा है। इससे भौम जल की सतह में एक जगह से दूसरी जगह पर जल स्तर का काफी अंतर देखा जा रहा है, क्योंकि पानी रिस तो रहा है, लेकिन हर जगह समान रूप से नहीं। इससे भौम जल के स्तर में आए दिन गिरावट आ रही है और इससे जल संकट बढ़ रहा है। जिस तरह यह जल संकट बढ़ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि कई जगहों पर भौम जल ही समाप्त हो जाएगा। जल है तो कल है, यह बात जानते हुए भी हम जल को बर्बाद कर रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण में है, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में भी है। हमें कहीं भी प्लास्टिक या अन्य कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, जिससे भूमि प्रदूषित हो। हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वर्षा भरपूर हो। यदि हम एक पेड़ काटें, तो हमें चार पेड़ लगाने चाहिए। हम कंक्रीट जंगल को पूर्णतः समाप्त तो नहीं कर सकते, पर उसे कम कर सकते हैं और पानी को रिसने का जगह दे सकते हैं, ताकि भौम जल का स्तर बढ़ता रहे। वर्षा के जल का हम संचय भी कर सकते हैं, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें जो जल हमारे छतों पर

0: आकर गिरता है, उसे हम धरती में एक गड्ढा खोद करके उसको जमा कर सकते हैं, जिसे हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ही कार्यों में। इस प्रकार हमारी सतर्कता और जागरूकता से ही हम इस जल संकट से लड़ सकते हैं और जल संकट को बढ़ने से रोक सकते हैं।
1: तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और जानते हैं राज्य स्तरीय खबरों को। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मंच पर बुधवार को कहा कि झारखंड ने देश को केवल खनिज संपदा ही नहीं बल्कि बौद्धिक पूंजी भी दी है, इसलिए अब हमारी पहचान माइंस ही नहीं माइंड से भी हो, रिसोर्स से नहीं बल्कि रिसर्च से भी होनी चाहिए, खनन से ही नहीं इनोवेशन से भी होना चाहिए, ग्रोथ से नहीं एक्सटेंसिव ग्रोथ से भी होनी चाहिए, यही नहीं सोच झारखंड के विकास की नई लकीर खींचेगी। सीएम सोरेन झारखंड सरकार के दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंशन के पहले सत्र में बोल रहे थे, जिसमें आईटी, एआई, डिजिटल गवर्नेंस तथा भविष्य की तकनीक पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। यह आयोजन झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जो गुरुवार यानी आज भी जारी रहेगा। यार दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के कक्षपालों को बड़ी राहत देते हुए सरकार को नए जेल मैनुअल 2025 के प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि कक्षपालों को राज्य पुलिस के समकक्ष वेतनमान, भोजन भत्ता, वर्दी भत्ता समेत अन्य सुविधाएं दी जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन और की अदालत ने की, साथ ही सरकार को 8 सप्ताह में इसका औपचारिक आदेश जारी करने और उसके बाद 4 सप्ताह के अंदर सभी वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया है। और दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विशेष सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस चीफ जस्टिस एमएम सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में बुधवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया गया था, लेकिन कोर्ट ने किसी प्रकार का अंतरिम राहत नहीं दिया है।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इस पड़ाव पर अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और बहादुरी के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार को प्रमुख 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यह पुरस्कार 6 प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, लेख, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, पुरस्कार राशि और घटक की हम बात करें तो सम्मानित होने वाले प्रत्येक बच्चे को 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र, 1 प्रशस्ति पत्र और 1,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में दिए जाते हैं। और अगर हम इस की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो 5 से 18 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिक जो भारत में रह रहे हों इसके लिए पात्र हैं। और नामांकन बच्चे स्वयं इनका व अन्य किसी व्यक्ति या संस्था उनके नामांकन कर सकते हैं और यह नामांकन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से

दोस्तों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों को। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बतला दें कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इसी माह से पटरी पर दौड़ने लगेगी। हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन कार्यक्रम जिंद स्टेशन पर होगा। उत्तर रेलवे ने उद्घाटन के लिए अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर और मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान पुलिस ने हिरासत में लिया है। भारतीय एजेंसियां उनके प्रत्यार्पण की कोशिश में जुट गई हैं।

और दोस्तों आपको बतला दे कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां सरकारी स्तर पर तेजी से चल रही हैं। श्रावणी मेले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में कांवरिये और सामान्य शिव भक्त जलार्पण के लिए बाबा नगरी पहुंचते हैं। देवघर आने वाले कांवरियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में राजकीय श्रावणी मेला 2026 में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय श्रावणी मेला में देवघर में 28 मेला अस्थायी ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। देवघर में कुल 21 अस्थायी पुलिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स और 13 ट्रैफिक ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्थापित किए जाने हैं। वहीं सीमावर्ती दुमका जिले में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए 7 अस्थायी ओपी और 6 ट्रैफिक ओपी खोले जाने हैं।

दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। दोस्तों, आपको बतला दें कि अमेरिका ईरान के बीच होर्मुज में संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति प्रस्ताव को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अंकारा में चल रहे नाटो सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुधवार को ये घोषणा की। ट्रंप ने कहा, अगस्त मध्य तक पूरी होने वाली शांति वार्ता का समय समाप्त हो गया है। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को हाहाकार मच गया। ईरान पर ताजा हमलों के बाद कच्चे तेल के दाम 6% से ज्यादा उछल गए, जिससे घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2% से ज्यादा टूट गए। और दोस्तों, आपको बतला दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुधवार को बताया कि ईपीएफ प्लेटफॉर्म में सुधार के बाद कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अब नई व्यवस्था में नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने पर अंतिम दावे पर ब्याज की गणना उसे मंजूरी मिलने की तारीख तक जारी रहेगी।

और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, और इस पड़ाव पर हम जानते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या था खास। दोस्तों, 9 जुलाई को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर हम सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 9 जुलाई के इतिहास से संबंधित है। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं घटी। आपको बतला दें कि 1816 में आज के दिन अर्जेंटीना स्पेन से आजादी की घोषणा की। 1877 में आज के ही दिन विंबलडन चैंपियनशिप शुरू हुई थी, और 1900

32 में साओ पाउलो राज्य संवैधानिक क्रांति की शुरुआत आज के दिन हुई थी, जिसमें ब्राजील के संघीय सरकार के खिलाफ विद्रोह किया गया था। और दोस्तों आपको बतला दें कि आज के दिन 2002 में अफ्रीकी संघ अदिस अबाबा इथियोपिया में स्थापित किया गया था, और 2011 में आज के दिन दक्षिण सूडान ने स्वतंत्रता हासिल की और सूडान से अलग हो गया था। अब आपको बतला दें कि आज के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो आज के दिन सन 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता, संसदीय मामलों के मंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा का जन्म हुआ था। आज के दिन 1923 में दूसरी लोकसभा के सदस्य मानक भाई अग्रवाल का जन्म हुआ था। 1930 में आज के दिन फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बाला चंद्रन का जन्म हुआ था। 1925 में आज के दिन प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक गुरुदत्त का जन्म हुआ था, और 1938 में आज के दिन भारतीय अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ था। और दोस्तों आपको बतला दें कि आज के दिन प्रसिद्ध कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ था। तो आज के दिन 1991 में एक सुप्रसिद्ध शायर शेरी भोपाली का निधन आज के

दोस्तों, इन्हीं संक्षिप्त जानकारियों के साथ आज के कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बेगम अख्तर की गाई इस गजल से।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उसके पिता।
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में

0: जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल। कलाम है कतील शिफाई का, मौसिकी तलत अजीज की।

0: से भूपेंद्र के स्वर में ये गीत, रचना गुलजार के, संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: आसमान का रंग बदल रहा था, रात कच्ची पड़ रही थी।
0: ये स्वर गुलजार का है।
1: पास के पेड़ से उड़ा और सुबह गुलाने आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा, चल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,

प्यार भी झूठा, तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा, हर तमन्ना, हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे, बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी, जफा झूठी, सितम झूठा, करम झूठा, कसम है सर से

करम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कदा झूठा, तुम्हारा जाम भी झूठा, तुम्हारी रात झूठी, चांद झूठा, आसमां झूठा, तुम्हारे अश्क गम झूठे, तुम्हारा जख्म जहां झूठा, तुमसे बढ़ के कोई बेमुरव्वत नहीं, प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें

नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में। अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमा ने आग रखी, शमा

0: प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा न करो। चांद ऊंचा।
1: डाकू हसीना फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम खत्म होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का

0: चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा

0: था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम यादों की महफिल। खिलौना फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज मदन मोहन की।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।
1: ठंडे ठंडे पानी से न

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर, अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनु रॉय का संगीत है।

0: हाँ? क्यों? क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना? और तुमने कहाँ से किया? नी से?
0: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो भाई, जो लोग, जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं उपस्थित, तो उन्हें तो आज की इबारत की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत लिखते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों से गीत हम श्रोताओं से कहते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ पहेलियां होती हैं, गाने होते हैं, कुछ गाने श्रोताओं की पसंद की भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम आज की इबारत जरा आपको पढ़कर सुना देते हैं। आंखें मन की खूबसूरत इबारत है, इनमें नींद और ख्वाबों का अनंत आसमान भी, यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नजर ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है, और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में हंसी खिलती है, खुशी झलकती है, और बिछड़ने का दर्द आंसुओं में ढल जाता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें यादों की महकती खुशबू होती है। आंखें सचमुच मन का आईना है, इनमें नींद भी है, ख्वाब भी, सपने भी, बातें भी, हंसी भी, शब्द भी, खामोशियां भी, और सबसे बढ़कर इनमें वो जादू है जो बिना कुछ कहे किसी का दिल चुरा लेने की ताकत रखता है। किसी की आंखें देख चौदहवीं का चांद याद आता है, और अभी ये भी धुन सुनी थी आपने इसी गाने की। तो बताइए, आपकी आंखों में पहला ख्वाब कौन सा चमका था? रात भर किसी के लिए जाकर उसकी फिक्र कब की, किस सन में, किस साल, कौन सा ऐसा लम्हा था किसी के लिए आप जागते रहे? अपने बच्चे के लिए सभी माँ जागती है, सभी पिता जागते हैं। कभी जब बच्चा रोता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं ही बच्चे को थपकी देते हुए, ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जब आप जागते हैं किसी के लिए। कभी आपके नयन किसी से डर जाते हैं, क्या आप किसी की आँख की रोशनी बनना चाहते हैं? तो हमें जरा बताइए, फिलहाल बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप गाने चुन सकते हैं। तो गानों की फेहरिस्त आप जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके गाने और हमारे गाने एक हो जाएं, तो हम वही गाना सुनवाएंगे। और दोस्तों, आंखों में नींद होती है, ख्वाब होते हैं, कई बार जब हम जागरण करते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ लिख डालते हैं, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आंखों से दुनिया देखी जाती है, हम इंसान को परखने का काम भी आंखों से ही करते हैं, और आंखों से पढ़ाई लिखाई करके अपनी एक विचारधारा गढ़ते हैं। आपने क्या किया है बताइए, आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। और हाँ, अगर जब इस संसार से विदा के बाद अपनी आंखें अगर किसी को दान कर दें, तो किसी की आंख की रोशनी बन सकती है। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम का। सबसे पहले प्यासा फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। बताइए कौन है हीरो हीरोइन?

प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया। और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुना है, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो गाने हमने चुने हैं वो आंखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो जरा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आंखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारीपन होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली, और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, खास तौर से अपने संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सीआईडी

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का

0: बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर, 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने बीसीसीएल से मांगी मरम्मत राशि। गिरडी समेत राज्य के कई जिलों में अलनीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन, 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विजन 2050 के तहत आयोजित इस परामर्श में झारखंड को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के लिए वैश्विक उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार के 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का स्वागत करते हुए कहा कि निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर देने की अपील की। संजय सेठ ने कहा कि अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड के बड़े शहरों में लंबे समय से लंबित पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
1: माननीय मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपने मिशन में सफल हो, पूंजी निवेश हो, किंतु उसके पहले बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो, लॉन्डर दुरुस्त हो, हालात माने बियॉन्ड कंट्रोल है। और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते हैं कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए, अब पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हर चीज की एक हद होती है।
2: मंत्री प्रिविलेज क्लास होता है, उनको बोलने दें, सबका लिमिट है ना, सब चीज का एक स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं, तो यदि स्काई ही लिमिट है तो बाकी का तो लिमिट है ही।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने मंत्री के रुख का बचाव करते हुए कहा है, किसी भी डीजीपी की यह प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान ले और उचित जवाब दें ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे।
3: बार बार पत्र लिखने पर अगर वो संज्ञान ना लें तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न खड़ा होता है, और यही प्रश्न माननीय मंत्री ने खड़ा किया है। और हमें यह लगता है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब पुलिस महानिदेशक को देना चाहिए।
0: राज्य सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में रक्तदान जागरूकता एवं निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा जारी ये निर्देश झारखंड हाईकोर्ट और WHO के मानकों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य थैलीसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। धनबाद में 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क निर्माण एक साल के भीतर ही बीसीसीएल की हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई जगह धस गई है। स्थानीय विधायक रागिनी सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पथ निर्माण विभाग ने मरम्मत का प्राक्कलन तैयार कर बीसीसीएल को भेज दिया है, राशि मिलते ही काम शुरू होगा।
4: तो रोड का जो डिपॉजिट पैसा है वो बीसीसीएल को देना है। हम लोगों ने बीसीसीएल को 3 महीने पहले ही पत्र लिखा, जैसे ही पैसा बीसीसीएल डिपॉजिट स्लिप्स में देगा हम लोग उसमें काम लगाएंगे। मुद्दा झरिया सीओ के द्वारा उठाया गया, थाना प्रभारी द्वारा उठाया गया, हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और आज निर्देश दिए हैं कि तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सके बीसीसीएल हम लोगों को उसमें फंड दे ताकि आरसीडी उसका काम कर सके।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले में ब्रेन मलेरिया से 2 और मरीजों की मौत के साथ इस वर्ष मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई 12,518 लोगों की जांच में 128 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 98 ब्रेन मलेरिया से पीड़ित हैं। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित गांवों में सघन जांच, दवा वितरण, फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है।

0: आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ यह संगठन दशकों से छात्रों को राष्ट्र सेवा, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। पलामू के चियांकी में नेशनल हाईवे 39 निर्माण के दौरान बिना मुआवजा मकान तोड़े जाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस में आज सुबह झड़प हो गई। ग्रामीणों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई ग्रामीणों और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर SDM संजय पांडे ने क्षेत्र में दो दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। भाजपा ने राज्य में मॉनसून के आगमन के बाद किसानों को खाद और बीज न मिलने का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य का अन्नदाता आज संकट में है।
1: किसानों को समुचित खाद बीज नहीं मुहैया करा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। किसानों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है।
0: राज्य के कई हिस्सों में इस वर्ष कम बारिश के कारण खरीफ फसलों पर अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है, जिससे धान की रोपणी प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के अनुसार गिरिडीह में मात्र 38% वर्षा होने से धान के बिचड़े तैयार करने में रुकावट आ रही है। जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों को कम पानी वाली फसलों की वैकल्पिक खेती अपनाने का सुझाव दिया है।
2: गिरिडीह जिले में इस वर्ष 62% बारिश कम हुई है। वर्षापात के अभाव में धान के बिचड़े 5000 हेक्टेयर में ही हुआ है, जबकि 8000 हेक्टेयर में लग जाना चाहिए था। जिले में 88000 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों से आग्रह होगा कि आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में दलहन, तिलहन, मड़ुआ और दूसरे अनाज की खेती की जा सकती है।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक चढ़कर 77065 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 179 अंक बढ़कर 24061 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। साहिबगंज में आज केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग में 203 बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिदो कान्हू स्टेडियम से समाहरणालय परिसर रोड तक हुई इस रेस का आयोजन 3 आयु वर्गों अंडर 14, अंडर 18 और सीनियर महिला ओपन वर्ग में किया गया। सभी विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धंसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों में अलनीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती है, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुँचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आंखियां और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आंखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आंखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आंखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आंखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं, वे गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आंखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, खास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए, गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पांव के पायल की आवाज भी न मालूम पड़े। खैर एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियां हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और

वहां जाकर घर का खाना खा सके और कभी किसी के इंतजार में भी जगे, और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतजार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आंखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं। तो सुनिए ये गाना और जरा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था। हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर।

में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये जरा बताइएगा, माँ पिता, टीचर, पत्नी, पति या किसी दोस्त से? मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली, ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर जरा भी नाराजगी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं, जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात, भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात। और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफर कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में। फिर भी इबारत की ओर आंखें नजरअंदाज नहीं कर सकती, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आंखें ऐसी हैं कि आंखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोहरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुरानी फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आंखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज थी, कैफी आजमी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराजगी और भी बहुत कुछ नजर आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती

का ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराजगी और भी बहुत कुछ

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आंखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आंखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, जरा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा है, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां 14वें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नजाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आंखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आजमी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है, हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुंचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊंचे लोग, मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भाई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत शामिल नहीं हुआ, और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे आज तो बहुत सारे गाने शामिल हुए। तो अब देखिए कि बहुत सारे श्रोताओं की पसंद इसमें शामिल थी, और अब सिर्फ इतना बता दें।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब हैं।

के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि श्रम, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 2:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए

0: भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार

0: कर रही हैं
1: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
4: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
3: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2020

0: 20 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।
4: आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल

बहारें फिर भी आएंगे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है

0: सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: करना।
1: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ओपी नैयर का संगीत था।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
4: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
6: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
5: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पारदर्शी, त्वरित जवाबदेह तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है, ताकि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और सुलभ सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रही

0: पीड़ित और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगरी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हर धर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए।
1: युद्ध पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। और यहाँ खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आपस को छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
0: राज्य में वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य पर लाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। इस दौरान सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विश्व रेबीज दिवस पर 28 सितंबर को राज्य कार्य योजना लॉन्च करने की जानकारी दी गई। इसके अलावा रेबीज नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। रांची नगर निगम में डेली मार्केट, न्यू मार्केट और खादगढ़ा के प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास के लिए आधुनिक व्यावसायिक परिसरों, मल्टी लेवल पार्किंग और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुराने बाजारों को आधुनिक स्वरूप देने, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर और डेली मार्केट क्षेत्र का चरणबद्ध विकास कर व्यापारियों तथा आम नागरिकों के लिए बेहतर और सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्था विकसित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की अनुकंपा समिति ने लंबित 160 मामलों पर विचार करते हुए 153 आश्रितों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इनमें 62 बाल आरक्षी, 24 महिला आरक्षी, 66 आरक्षी तथा एक अग्निशमन चालक के पद पर नियुक्ति शामिल है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि दिव्यांगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने और अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के अशोक नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक व्यवसायी के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि एक अन्य आवास में चोरी करने में असफल रहे। हटिया पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के साथ मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
2: एक घर में चोरी हुई है और एक घर में जो है वो चोरी करने का प्रयास किया गया था। उस दौरान जो है वो जैसा हम लोग सीसीटीवी में देखे हैं, किसी और के द्वारा फायरिंग करने का अभी तक नहीं मिला है। बॉडीगार्ड जो है तो उसका हाथ से गोली चलने की संभावना ऐसा लग रहा है कि उसके पैर में अपने से गोली चली है। गोली का भी हम लोग के पास कहीं बाहर से है और बिलेट एक मिला है।
0: दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक आनंद भारद्वाज को एसीबी ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक जमीन से संबंधित कार्यों के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी, जिस पर यह कार्रवाई एसीबी ने की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, पलामू, रांची, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: Haley.
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
2: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहे और अपने कार्य करते रहे। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है।
2: और हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
2: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
1: जी।
2: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना, इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
1: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहां है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे,
2: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हम मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
1: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
2: मेरा गुल्लक में
1: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
2: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे और बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
1: बिल्कुल। और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं। और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है, तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
2: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
1: देखो अब मैं क्या कर रही हूं।

0: है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में.
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि उनके कमेंट

0: शामिल करना बहुत जरूरी है और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
1: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
0: बेल्लारी के पास कल्लू कम्बा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
1: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
0: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे
1: जी। और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
0: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगथी नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
0: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
1: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
0: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
1: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती

0: कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
0: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
1: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
0: जी
1: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत,
1: सुमधुर
0: गीत
1: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना चल सकता है ना? ऐसा
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए एक छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
1: हाँ हाँ,
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है, डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए।
1: तो गुल्लक हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
0: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है, जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताजा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है।
0: आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें, हाँ। कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
1: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें, कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये

0: उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए वो गुल्लक ही है, जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
0: और दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी की गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
0: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
1: और देखो, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम
0: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक

0: खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दीवार होती है, दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते ही गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से, श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल
1: सच।

0: मेरी तो आंख नम हो गई कि इस तरह से भी, यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना
1: बिल्कुल
0: पड़ता है।
1: और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
0: किस तरह की परवरिश
1: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचा कर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
0: और बच्चे इतने स्मार्ट होते ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो
1: है।
0: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
1: कर रहे हैं।
0: एक साथी ने लिखा है दीपा, ये बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
1: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट, तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के भाई, गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली बातें समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करे, सोच समझ के उनसे वादा करना।
1: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं। और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था।
1: यानी सर्दी के जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मियों में,
1: गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट

0: ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
1: ये देखिए ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों की मैं दिमाग चल जाता है सबका, और देखिए हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया दिया जाए।
0: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए थे। ऐसी भी शरारत
1: होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर के घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे, मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
0: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है, हेडलाइट्स चालू रखें, भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें, वाइपर्स की जांच शुरू करें, यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें, और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें, और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
1: जी,
0: तो संभल के चले, बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं
1: तो अभी भी ये जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं,
0: तो लापरवाही ना बरते जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
1: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं,
0: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई जरूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की जरूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो जिंदगी है
0: जी, बिल्कुल। और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या जिंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहां पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहां पता होता है कि रास्ते पर कहां गड्ढे हैं, कहां ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी, त्वरित जवाबदेह तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित तिथियों को चरणबद्ध प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज जमशेदपुर

0: अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना? बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है खुद्दार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं खुद्दार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह हैं।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, ओके रहूंगी तेरी
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें।

0: पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो परमाई शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है वीर भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्यप्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है।
0: जी,
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और

0: अक्सर हम जाया भी करते हैं गाँव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
1: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
0: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
1: अच्छा।
0: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
1: आप बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? हाँ, और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक है, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
0: बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष,
1: अच्छा।
0: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ, सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है,
1: हाँ।
0: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं,
1: हाँ।
0: कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें, और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कम्पोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
1: बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका, और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।
2: जिम जिम

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी इसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली है जोधपुर जैसलमेर, उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है पर्यटन?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ।
1: गाना आज का मेरा जो पसंद है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता
0: हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें देखते।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं।

0: तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंद।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 होने को है। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड 1324।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: कीजिए स्वीकार नमस्कार विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
4: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
3: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ सच है तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू और ज्योति ठाकुर
4: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत देवेश ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप
3: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन
4: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल और टेक लाल पटेल
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
4: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
3: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।

0: जी हाँ श्रोताओ, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
1: जी ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
0: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत
1: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
0: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
1: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
1: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
1: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
0: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

पुजारियों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब

हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ

0: राजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है। इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
1: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
2: जी पिताजी,
1: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
0: बहुत अच्छा।
1: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
3: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
1: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
0: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
1: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
1: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
3: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल, बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो। कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
3: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
1: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
3: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
1: हाँ।
3: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
2: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: क्या भाग्य और सजीले सवाल है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य

अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
3: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
3: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
4: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
5: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
4: चलो चलो।
5: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
3: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
5: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
4: चलो चलो।
5: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
4: अरे ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
4: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो
4: क्या
2: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
4: अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ।
4: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ।
4: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
7: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड 1324। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन आज राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य की अमूल्य धरोहर की झलक भी देखने को मिली। इस मौके पर वक्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन की सराहना की। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में जगन्नाथपुर रथ मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। DGP ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र और रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णन ने कहा कि ABVP का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान चतरा और हजारीबाग जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने में सभी किसान भाई बहन के जोहार प्रणाम नमस्कार और श्याम के दिन से। और आज हमारे संगे आ रहे अश्विंदर भाई, तो अश्विंदर भाई तो कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत करो और जोहार प्रणाम नमस्कार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सभी किसान भाई बहन के आपने से जोहार प्रणाम करो श्याम भाई। और देखो हम ढेर सारा जानकारी भी लेके आई है, जानकारी लेके आ ली है जे आजकल कृषि में जो है से वर्षा जल संरक्षण के लाभ और किसान भाई बहन के का ऊपर उपयोगिता हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ये कि देखे जैसे बारिश इस बार जैसे संभावना जतावल जा रहा है कि जैसे मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि इस बार बारिश की कम संभावना है। हाँ। मतलब जितना मात्रा में पिछले बार भले है और जितना होना चाहिए वोकर अनुपात बारिश ना है, तो किसान भाई बहन के कम समय में और कम दिन वाला अनाज बोना बहुत ओकर लिए उचित होते। ओकर बाद का है कि सबसे पहले बीज बोए के पहले या बिहन करे के पहले ये उनका ध्यान रखे पड़ते कि कृषि में जो वर्षा जल संरक्षण है एक तरह का किसान को अत्यधिक लाभ हुआ है और एक फसल के जो सिंचाई के खातिर जो पानी के उपलब्धता हुआ है सुनिश्चित करो थी किसान भाई बहन। भूमिगत जल स्तर एकर में जो है से एकर ग्राउंड वाटर बढ़ा हुआ है, एकर लेवल बढ़ा हुआ है और मिट्टी के जो कटाव रोके रुको भी है। इससे अगर देखे होगा कि सरकार के माध्यम से चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो कि बहुत डोभा तालाब भी चल रहा है और डोभा तालाब चल रहा है तो कहीं जहां जहां लगो है कि पानी के जहां स्रोत है श्याम है ओकरा छेकल जा रहा है, ओकरा जो है वहां मेढ़ बहुत बड़ा भीड़ बांध के तालाब के ओकर में निर्माण कराल गया है। काहे कि इसलिए कि पानी के जो ओकर में बढ़वार रहते है, पानी के संचय रहते है ओकर में। दूसरी बात का है कि एकर में कहा है कि जब पानी संघर जीते पानी एकर में जम जीते तो एकर में उत्पादन का जो क्षमता वो है वो आय जैसे दुगुना हो जाए। दूसरी बात कहा है कि सिंचाई खातिर ये सुनिश्चित जल हो है ओकर उपलब्धता जो है तब बारिश के पानी जमा करके खेत तालाब के जो है से किसान भाई बहन मानसून के बाद ये सूखा जो पड़ जा है किसान भाई बहन के फसल एकर में कहा है कि जब पानी स्टॉक रहो है पानी जब संचित सिंचित कर लेते हैं एकर में तो एक तरह से जीवन रक्षक के काम करो एकर में।
0: देखा बड़ी बढ़िया बात बदल रहा है अश्विंदर भाई। और देखा कि सबसे पहले हम इनके दिमाग में रखे चाहिए अश्विंदर भाई कि हम इनके झारखंड जी है देखा कि पठारी क्षेत्र है, तो हम इन पठारी क्षेत्र में ही है तो देखा कि एकदम स्वाभाविक है कि अगर पानी गिरू है बरसात के पानी तो जी ऐसे ढल के जी ऐसे मैदानी क्षेत्र दने भाग
1: जाए
0: जकर चलते हमें पानी की जी ऐसे बड़ी दिक्कत हो है। तो देखा ओकर लेकर के सरकार के हम इनके भारत सरकार ने से देखा बड़ी तरह की योजना भी है, योजना के हम इनके लाभ भी उठवे चाहिए जैसे बतेला कि डोभा कट रहा है डोभा के निर्माण करल जा रहा है, फिर कहा कि जगह जगह पर चेक डैम बनावल गया है पानी के रोके खतीले, फिर कहा खेत के पानी खेत के करल गया, फिर तालाब नहरा कुआं ये सब बनावल जा रहा है। तो हमें कोशिश करे चाहिए अश्विंदर भाई कि जैसे भी देखा कि बरसात के समय आले जैसे बतेला कि इस वर्ष जो है से पानी जैसे 50% जो है से अभी कम पड़े के जैसे मौसम विभाग के सूचना हाँ। है कम पड़े की संभावना है, तो ओकरा लेकर के हम इनके हमेशा दिमाग में रखे के चाहिए ना कि हमें ई बात के जैसे दिमाग से निकाल देवे के चाहिए। हम इनके कोशिश करे के चाहिए कि पानी जब पड़ रहा है तो कम पानी के भी हम इन कैसे संचय करके रखे ताकि हम इनके आवेला समय खेती करे में दिक्कत ना होते। तो हम इनके पहला काम है कि जे ये हरा तालाब पोखर हम इनके जो है ओकरा सबसे पहले हम इन भरे के कोशिश करिए ताकि जो भी बरसात पानी आऊ है ओकरा कहीं भागे ना दिए, ओकरा सुझिया कोकरे में लइए कहीं भागे ना दिए पहला काम हम इनके। फिर देखा कि डोभा जो कटल है ओकर भी वही काम है कि पानी जो है से जे भी तनी मनी पानी अगर बरसात के द्वारा अगर बह रहा है तो ओकरा में सुझिया का अपन डोभा में लइए। तो इस तरह से पानी जो है से हम इनके मैंने कहा कि संचय करे के चाहिए। और फिर देखा कि का हुआ कि बड़ी अभी देखे तो शहर में जो है से बहुत बढ़िया अभी सुविधा हो गया है, बड़ी बढ़िया दिमाग भी लगा लल थी अश्विंदर भाई की छत के पानी जी रू है जो बरसात के समय में अब वो पानी के बर्बाद होवे ना देते
1: ना दे।
0: तो उसी तरह हमके गांव देहात ने भी अपनावे के चाहिए कि छत के भी पानी जो है ओकरा भी हम कैसे संग्रह करिए कैसे ओकरा संचय करके रखिए। तो देखा कि अगर हम इन अपन घर के आंगन में चाहे घर के है जो दूरा हुआ है ओखिन में अगर एक बड़का सा अगर कहें अपन सोखा बना दिए और घर के जो छत के पानी है सारा पानी अगर ओकरा हमें सुझिया दिए तो देखा कि अपन सोखा के काम है कि पानी जैसे सूख जितो फिर तोहर

0: के नीचे जो जमीन है वो
1: पानी के लेयर
0: बना के रखता, तो पानी भी एक संचय के साधन हो, ताकि तुम्हारा कुआं जो हो गलो चाहे चापा नल के जो बोरिंग हो गलो उस सब में पानी के लेयर जैसे बढ़िया तरीके से बनल रहे। तो हमें के हमेशा ध्यान देवे के चाहिए कि पानी के जैसे कैसे हम बचाइए, ना कि ओकरा ज्यादा खर्च करिए।
1: बिल्कुल सही बात है, और किसान भाई के ध्यान देवे पड़ते हो। जैसे हो गया जल संचय के बारे में, एक में कहा है कि जो मिट्टी के जो कटाव वो है, जैसे किसान भाई बहन के खेत है ओकर में मेढ़ के संगठन जरूर समय से मेढ़ बनावे के, तो एक में कहा है कि मिट्टी के कटाव खातिर जो ढलान वाला जो खेत वो है, जिसे ओकर में कहा है कि ट्रेंच टाइप के ट्रेंच तरी अगर कटवा देथिन ओकर में, जैसे देखा थी कि बीच खेत में ना बिल्कुल जो बंजर उनकर पास जमीन पड़ल है, बंजर टाँ है जो जंगल किनारे जो है और ओकर में कुछ खेती ना हो रहा, तो जो ढालनुमा जो है वो ट्रेन तरी कटवा देते हैं ओकर में, ताकि जो मिट्टी के जो कटाव है, जो मिट्टी के जो बहाव है ओकर का धीरे धीरे धीरे धीरे रुकते जीते, और जब मिट्टी के बहाव जब होता है तो धीरे धीरे जब ट्रेन जो कटे थी तो वहां जाके मिट्टी स्टॉक होते, मिट्टी जाकर ओकर में संगत जीते, और धीरे धीरे जो है खेत जोताए होते होते वो खेत लेवल हो जाते, बराबर हो जाते। तो किसान भाई के एकर में कहा है कि जब मिट्टी वहां संगत जीते, तो जब कोई भी खेती बाड़ी ओकर में करते हैं तो उनका जो है से उर्वरा शक्ति जो है से मिट्टी के बढ़ भी सको ओकर में। ओकर बात कहा है कि जो कृषि से लागत और बिजली के जो बचत हुए श्याम है, जब खेत में पर्याप्त नमी हुआ है ओकर बाद जो है से भूजल स्तर अच्छा हो जाए, और किसान के सिंचाई खातिर जो है से पंप सेट कम चलवे पड़ते एकर में, और ईंधन और बिजली के एकर में कहा है कि दोनों जो है से भारी बचत हो जाए,
0: भारी बचत है। तस्मिंदर भाई देखा हम इन कार्यक्रम में यार बनल रहे, ओकर पहले हम इन जो है से एक जो भेंटवार्ता लेकर आ लिया किसान भाई बिन सकते, और भेंटवार्ता है कि कांदा और पेक्ची की जो है से उन्नत खेती करके हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सको यार, कैसे बढ़िया तरीके से खेती कर सको।
1: किसान अथीन से राजेंद्र दांगी थी, आज हमने से बातचीत करे थे श्याम सुंदर राजा करते।
0: हाँ तब चला सुनो ये जानकारी भरल हाँ। बातचीत किसान भाई बंधु, आज हम आए हुए हैं चौपान प्रखंड के दहियर गांव, और यहां पे आज हम बात करेंगे एक सफल बुजुर्ग किसान से, देखते हैं कि क्या क्या ये मेहनत करते हैं और क्या क्या फसल लगाते हैं, तो इनसे हम बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले आप अपना नाम और पता बताएं कि कहां रहने वाले हैं, और अपना नाम बताएं।
2: मैं राजेंद्र दांगे नाम है
0: जी,
2: दहियर घर है
0: जी,
2: चौपारण थाना है, जिला हजारीबाग है,
0: तो जी
2: रहने वाले हूँ
0: जी। तो राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस समय में देख रहे हैं कि कभी धूप भी हो रहा है, कभी बारिश भी हो रहा है, तो इस समय में आप कौन कौन सा फसल अपना खेत से निकाल रहे हैं?
2: ये भिंडी लगाए थे।
0: तो भिंडी आप कब लगाए थे?
2: फागुन में
0: लगाए थे
2: हाँ।
0: तो उसके भी मान के चलिए रेट अभी जो है से कम है, बाकी बात भिंडी आप कितना रेट से बेचना शुरू किए थे?
2: 20 रूपए से बेच रहे
0: हैं। 20 रूपए बेचना शुरू किए थे
2: हाँ।
0: तो भिंडी मान के चलिए अभी आपका रेट जो है सो कम है
2: हाँ।
0: तो उसके बाद जो अभी मान के चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि भिंडी के अलावा आपका खेत में कौन कौन सा फसल लगा हुआ है?
2: बोधी लगाए है तो वो भी 20 रूपए किलो है
0: जी।
2: करेली है तो वो भी 20 रूपए किलो है।
0: और क्या क्या फसल लगा हुआ है?
2: जैसे कि
0: तभी गर्मों में और क्या क्या आपके पास लगा हुआ है?
2: यही चार फसल है हमारा पास, बाकी अभी कंदा ऐसे डांट चलिए रहा है, कंदा का भाव का रहेगा नहीं रहेगा।
0: कंदा आप लगाए हैं?
2: थोड़ा
0: सा लगाया। कंदा लगाने का मैंने कितना लगाए कंदा आप?
2: आधा कट्ठा में
0: कितना बिहन लग गया होगा आपका?
2: लगभग 20 किलो।
0: 20 किलो तो बिहन अपना घर में रखे थे कि बाजार से लाए?
2: बाजार से लाए।
0: कैसे केजी आपको पड़ा बाजार में?
2: 200 रूपए पसेरी।
0: 200 रूपए पसेरी
2: हाँ, 40 रूपए किलो।
0: 40 रूपए
2: 40-25 200
0: हाँ, 40 रूपए केजी आपको मैंने मान के चले कहिए तो 40 रूपए किलो आपको पड़ा। तो कंदा लगाने का जो तरीका है, जिसे हमारे किसान भाई बंधु सब चाहते हैं, जैसे जो नहीं जानते लगाने के लिए, अगर उसको हम बताएं कि कैसे लगाना है, तो लगाने का तरीका क्या होना चाहिए?
2: लगाने का उसका झोरा सज के उसको पटाना पड़ता है, उसको फिर ऊंचा करके
0: मैंने कितना ऊंचा करना है? लमसम
2: 1 फीट गढ़ा, 1.5 फीट गढ़ा कीजिए
0: जी हाँ,
2: और उसको 1.5 फीट ऊपर कर दीजिए।
0: 1.5 फीट ऊपर भी करना,
2: ऊपर करना है गढ़ा कर दर मार के
0: जी हाँ।
2: तेकर बाद फिर चुगड़ो करना है, तेकर बाद लगाना है उसको।
0: मैंने 1.5 फीट मान के चलिए, जितना 1.5 फीट मट्टी दीजिएगा तब
2: 1.5 फीट ऊपर नीचे कोड़िएगा ना, तो ऊपर कर दीजिए उसको।
0: ओ मैंने ऊपर कर दीजिए ताकि उतना वो आपका जो से कंधा बैठेगा आपका
2: हाँ।
0: मैंने मिट्टी जितना दीजिएगा उतना आपका कंधा हाँ, बढ़िया रहेगा
2: हाँ। लगाने खुन के उतना एथी है, फिर जब जन्म जाएगा ना तो उसको जड़ तर माटी करना है, फिर
0: मैंने जड़ के पास भी करना,
2: जड़ खाद के फिर जड़ तर करना है।
0: कितना दिन के बाद उसमें करना है?
2: उसको 2 महीने के बाद, जैसे अभी जड़ तर करना है उसको।
0: ओ मैंने लगा दिए उसके हाँ, बाद अभी जो
2: जड़ तक करेंगे,
0: जड़ तक करना है। तो फिर कंदा कब तक आपका खेत से निकलेगा?

0: उसके बीच में क्या क्या
1: भादो में उसको खाब के माटी चाह देना, कुछ नहीं करना,
0: कुछ नहीं करना, अब बीच में मान के चले घास हो जाएगा तो
1: उसको निकालना पड़ेगा,
0: मैंने निकालते रहना है और फिर जाके वो भादो में आपका मैंने खेत से निकालना शुरू हो जाएगा और देखते हैं कि उसका बाजार में रेट भी उसका जो दाम भी जो
1: पचास रूपए चालीस रूपए
0: उसका दाम भी बढ़िया रहता है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा हमारे किसान भाई बंधु के पास जो है ऐसे परेशानी होता है कि पानी
1: पानी और जैसे कोड़ और भरना पड़ता है, फिर कोड़ना पड़ता है ना, फिर उठा उसको जड़ तर करना पड़ता है, बहुत मेहनत।
0: हाँ जैसे देखिए मेहनत है तो पैसा भी है, लेकिन है कि सबसे बड़ा समस्या है पानी,
1: पानी एक दिन पानी देना पड़ेगा। हाँ
0: पानी आपको जो से जब तक नहीं उसको जिंदा रखेगा, जैसे अब बरसात पड़ जाएगा तो बरसात के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं, खाली जो निकौनी करने का जो दिक्कत है बस वही दिक्कत है। तो मान के चले कंदा आपके अगर उपज हो गया जैसे पचास रूपए साठ रूपए के जी बेच रहे हैं तो आपका बाजार मैंने आप घूम के बेचते हैं कि कहीं
1: बाजार मार्केट में भी बिकेगा,
0: मैं थोक भी देते हैं कि घूम के बेचते हैं?
1: घूम के जैसे मार्केट में बेचते हैं।
0: मार्केट आपका कहाँ पे?
1: महाराजगंज।
0: महाराजगंज आपका बाजार हुआ तो वहाँ पर जाकर के आप उसका जो से बिक्री कर लेते हैं,
1: चालीस रूपए पचास रूपए बेच देते हैं,
0: बेच देते हैं। अच्छा इसके अलावा और अभी क्या आपके पास फसल लगा हुआ है? जैसे अभी आप बताए कि भिंडी आप लगाए तो
1: आपका रेट चल रहा है,
0: जैसे आपका रेट जो है कम है, मेहनत के अनुसार आपका रेट अभी कम चल रहा है? अभी जैसे कि कोई भी सब्जी का अगर रेट कम हो जाता है उसका कारण है कि हमारे किसान भाई बंधु सब ज्यादा मैंने की बाजार में उपलब्ध हो गया सब्जी का, इसलिए रेट
1: करोड़ है, दस रूपए किलो है, आठ रूपए किलो, दो किलो दे रहे हैं, पांचों रूपए किलो पड़ रहा है।
0: देखिए बाजार में क्या कीजिएगा, बाजार में जैसा जिस तरह से है उसे हिसाब से आपको चलना होगा। लेकिन उसके अलावा अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और क्या लगा हुआ है, जैसे कांदा बताए उसके अलावा और क्या आपके?
1: अभी पेक्ची है।
0: पेक्ची है तो पेक्ची कितना लगाए आप?
1: बस दूर आधा कट्ठा वो भी है,
0: आधा कट्ठा वो भी है। तो पेक्ची घर से ही लगाते हैं कि बाजार से भी लगाते
1: हैं? उसको भी बिया रखते हैं हम लोग,
0: रखते हैं। तो उसका बिया रखने का तरीका क्या था उसे बताइए।
1: उसमें जैसे सुखल में उसको कबार के कोड़ के सूखा हुआ में उसको रख दीजिए और उसको फिर लगा दीजिए। अभी समय
0: कैसे रखना पड़ता है?
1: ऐसे रख दीजिए,
0: ऐसे मैंने खाली घर में रख दीजिए,
1: घर में रख दीजिए,
0: उसमें कुछ नहीं होता है?
1: कुछ नहीं, कुछ तो गलता है, सड़ता है, कुछ तो सूखता है,
0: सड़ता गलता भी है।
1: एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, दो हिस्सा बचेगा रखने पर
0: ना, मतलब एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, मतलब कि कहिएगा तो उसमें भी सड़ता गलता है। अगर आप सुरक्षित से रखेंगे तो वो भी बहुत कम सड़ेगा गलेगा। तो पेक्सी आपका अभी कैसा है?
1: पेक्सी ठीक है।
0: मैंने कैसा मैंने
1: रंग है इतना ऊंचा हो गया है।
0: कितना लमसम कितना
1: बोल रहे ना, आधा कट्ठा में
0: तो मैंने कितना फीट तक आपका मैंने ऊंचा?
1: चार फीट हो गया अभी।
0: अभी उसका चार फीट हो गया तो उसमें क्या देख रहेगा अभी करना पड़ रहा है?
1: अभी पानी देना पड़ रहा है चार रोज पर,
0: चार रोज पर पानी देना पड़ रहा है। तो पेक्सी भी वही कांदे के समय निकलेगा कि अलग?
1: नहीं एक महीना पहले निकलेगा।
0: एक महीना मैंने कांदा से एक महीना के पहले निकलेगा? मैंने कांदा भी आप लगा लिए, पेक्सी भी लगा लिए, फिर अभी देख रहे हैं कि धान का समय आने वाला है। तो उसमें आपका क्या प्लान है? अब धान लगाने के पक्ष में है कि छोड़ देने के पक्ष में?
1: लगाएंगे, धान तो खाने वाला चीज है, नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या?
0: हाँ वो तो बहुत ही ठीक बोले कि आप नहीं लगाएंगे तो खाएंगे कुछ ही। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसके तैयारी में क्या क्या अभी आपका दिमाग में होगा ना कि आप तैयारी क्या करके रखें धान के लिए?
1: धान जोताई करके छोड़ दिए हैं उसको, फिर बिहन बीज भंडार से लाएंगे,
0: बिहन करने के तैयारी में लगे,
1: तैयारी में लगे हुए।
0: अच्छा बिहन में जिससे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा धान को जो से आप मैंने कि ज्यादा पसंद करते हैं?
1: हम तो आगे साल कमाची लगाए थे।
0: कमाची लगाए थे,
1: अच्छा पैदा हुआ था, झूठ के
0: मैंने पैदावार में बढ़िया हुआ था। तो उसको आप खाने के लिए भी रखते हैं कि सारा बेच देते हैं?
1: नहीं खाने लिए भी रखते हैं, बेचते भी हैं,
0: बेच भी देते हैं, दोनों काम करते हैं,
1: दोनों काम।
0: मैंने कमा अच्छा एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे कमाची आप लगाए तो हमारे किसान भाई बंधु सब क्या करते हैं कि बिहन करने के लिए बहुत ऐसे है कि नहीं जान पाते हैं, तो बिहन कैसे करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए?
1: बिहन करने का गिर रहा है, घास है, सब जन्म रहा है
0: जी हाँ,
1: फिर थोड़ा मोड़ा उसको खाद के दीजिए, फिर जोत
0: जोताई कर दी, फिर
1: तकर बाद उसको बिया कीजिए।
0: तो सूखले में कर दीजिएगा पानी?
1: सूखले भी रहेगा चलेगा, वो पानी उसको एक बार पड़ना चाहिए, जन्म जाना चाहिए।
0: के दवा भी देते हैं कि खाली से करते हैं?
1: दवा भी देते हैं, मगर दवा उतना मान्यता हम नहीं रखते हैं उसमें।
0: मैंने कि अभी आप देखिए जिस हिसाब से पानी पड़ रहा है तो अगर पानी पड़ने के बाद जो जन्म जाता है फिर उसको जोताई बढ़िया से कर दीजिए, एक दो तीन चास कर दीजिए, उसके बाद
1: मर जाएगा,
0: मर जाएगा, फिर
1: जन्म जाएगा, मर जाएगा।
0: हाँ तो फिर उसमें पानी घुसा करके आप बिहन कर दीजिए, उसमें तो आपका बिहन अच्छा रहेगा। अच्छा बिहन जो है कट्ठा में कितना छिटना चाहिए सो थोड़ा सा बताइए?
1: कट्ठा में एक किलो वाला कम से कम तो दस किलो,
0: एक कट्ठा में दस केजी एक केजी वाला छिटना चाहिए।

0: तब आपका बिहान जो मान के चले
1: थोड़ा गाढ़ा रहेगा ना तो कबरता ठीक है, जड़ में जड़ सट जाएगा ना तो कबरता ठीक है, और पतला ढेर रहेगा ना
0: तो जड़
1: टूट जाता है, टूट जाता है,
0: हाँ जड़ फैल जाता है,
1: हाँ टूट जाता
0: है, हाँ माने कि कहिए तो जड़ फैल जाने, जैसे कि पतला है तो उसका जड़ फैल जाएगा,
1: हाँ।
0: और जड़ फैलेगा तो थोड़ा कबड़ने में दिक्कत होबे करेगा, अगर गढ़ा रहेगा तो उसका जड़ कम फैलेगा तो कबड़ने में आसान होगा। तो चलिए राजेंद्र जी, आप बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई एवं बंधु को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हाँ तो देखा असमेंद्र भाई, अभी हमें सुना लिया है भेंटवार्ता, और भेंटवार्ता जी हल ऐसे कांदा पेक्षी और धान के बारे में भी बतेल थीं, तो देखा कितना बढ़िया भेंटवार्ता है। और अगर किसान भाई बहन सब अगर कांदा पेक्षी लगावेल खोजो थीं तो जरूर ये जानकारी सुन के लाभ उठे थीं, कांदा पेक्षी जरूर लगे थीं। ओकर बाद देखा कि हमें एगो जानकारी देने चलो ये असमेंद्र भाई, और वो है कि बाजार भाव।
2: हाँ हाँ,
0: बाजार भाव के बारे में भी जरा सा हमें अपन किसान भाई बहन के संगे बातचीत कर लो। ये तो देखा कि आज के जो बाजार भाव है तो लाल आलू जो है अभी से 20 से 25 रुपए प्रति किलो है, और सफ़ेद आलू जो है से 20 से 22 रुपए प्रति किलो है, और प्याज जो है से 30 से 35 रुपए प्रति किलो है, और फूलगोभी के दाम अभी बाजार में जो है से 60 से 65 रुपए प्रति किलो है।
2: और देखा से हमारे पत्ता गोभी जो है से 30 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलो है, और पटल 30 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो है, भिंडी जो है से 20 से 25 रुपये प्रति किलो है, परोर जो है से 15 से 20 रुपया प्रति किलो है, और कद्दू जो है से 15 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो है, हरा मिर्च 70 रुपये से लेकर 80 रुपया है, और शिमला मिर्च 80 से 85 रुपये किलो है। और जहाँ तक गाजर की अभी बात करें तो गाजर भाई सलाद में बहुत बेहतर चाव से किसान भाई ने खाए थे, तो गाजर है से 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, बीट 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, और सेम जो है से बहुत गिनल चुनल जगह पर अभी देखा जाए बाजार में, वो जितना किसान भाई बहन भरपूर उपजाऊ थे सेम है उतना ना है, लेकिन कहा है कि 60 से 80 रुपया भी किसान भाई बहन खरीद रहे थे।
0: हाँ हाँ, और देखा कि अगर बात करो ये जैसे बीन अभी बाजार में जो है से कहीं 25 30 कहीं 20 22 इस तरह बाजार में चल रहा है, और मूली के दाम अभी देखा 20 से 25 20 से 22 इसी तरह चल रहा है, और धनिया पत्ता के दाम देखा भी बढ़ गया है बाजार में असमेंद्र भाई 100 150 इस तरह करके भी बाजार में चल रहा है, और अदरक भी जो सभी देखा कि चढ़ल हो बाजार में 100 150 भी अदरक भी चल रहा, और खीरा के दाम जो सभी देखा 30 से 35 रुपये किलो है, और टमाटर के दाम देखा भी कुछ बढ़ रहा है 40 50 इस तरह से बाजार में भी चल रहा, और लाल साग जो है से और पालक साग जो है से 20 से 25 रुपए किलो इसी तरह से चल रहा है।
2: बिल्कुल सही बात बता रहा देखा कि और इसी तरह जैसे किसान भाई बहन अपन अपन जैसे अगात फसल और अगात खेती करो थी श्याम भाई, और दूसरा बात कह रहा हूँ कि किसान भाई बहन अगर बेहतर तरीके से अगर आर खेती करल चाहो थी एक में कहा है कि बहुत अच्छा तरह से अगात खेती कर सको थी। और देखो कि आज के जो तापमान की हम बात करो ये तो आज जो है से अधिकतम तापमान जो है से 29 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस है।
0: हाँ तो देखा असमेंद्र भाई आगे हम और भी बात करबे, लेकिन देखा अभी पास एगो बढ़िया लोकगीत है तो सुनो ये सबसे पहले एगो बढ़िया लोकगीत।
2: हाँ।

0: हाँ तो देखा सुमेंद्र भाई, अभी हमें सुनलिए कि एक बढ़िया लोकगीत, और देखा ओकर बाद हम बढ़ोई अपन चर्चा के देने, और देखा कि अभी बड़ी बढ़िया एगो चर्चा हम इनके पास है सुमेंद्र भाई कि श्री अन्न के खेती से जो है से हम इनके किसान भाई बहन सबके जो बहुत संभावना है ओकरे पर हम इन चर्चा करबे, और देखा कि इतना बढ़िया हयो है ये खेती की अभी कि देखा किसान भाई बहन सब अब धीरे धीरे जो है से वही मोटा अनाज के देने जैसे बढ़ो लगे रहें, तो एक में सबसे ज्यादा लाभ है कि मेहनत कम है किसान भाई बहन सबके और लाभ जो है से ज्यादा है, और मोटा अनाज खाए से देखा कि बहुत बीमारी भी जो है से दूर हुआ है और शरीर जो है से स्वस्थ रू है, तो एक बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी अपन किसान भाई बहन के साथ साझा करो ये सुमेंद्र भाई। देखा कि सबसे बढ़िया अगर जलवायु को अगर हम बात करो ये सुमेंद्र भाई, तो देखा कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है से कम मध्यम वर्षा में भी जो है से वहाँ जो है से उगावल जा सको है, और फिर मिट्टी के अगर हम बात करें तो अच्छा जल जैसे निकासी वाला जो दोमट मिट्टी हुआ है ओकर में जैसे हमें आराम से अगर मोटा अनाज है जैसे कि आराम से श्री धन जी खेती हुए हम कर सको है, और बुआई के समय अगर बात करो ये हमें तो खरीफ के में जैसे समझिए जून से जुलाई महीना के जैसे मानसून शुरू होवे पर जो है से एक जैसे हम इनके बुआई कर देवे के चाहिए।
1: एक में कहा है समय कि जैसे जलवायु के अनुकूल और कम लागत वाला खेती है, जैसे कहा कि पानी के कम खपत हो एकर में, और श्री अन्न के जो फसल हुए है बहुत कम पानी में हुआ है और पक कर तैयार भी हो जाए। दूसरा बात का है कि बंजर और ये कम उपजाऊ वाला भूमि जहाँ है, जिसे उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ एकर में पथरीला और जो कम उपजाऊ वाला जो भूमि हुआ जो मिट्टी हुआ है ओकर में भी हम मोटा अनाज की खेती कर सकते हैं किसान में कर सको थी। दूसरा बात का है कि प्राकृतिक पर जो कृषि हुआ है एकर का है कि रासायनिक खाद और जो कीटनाशक की आवश्यकता हुआ है लगभग न के बराबर हुआ है, और एकर में जो किसान के लागत हुआ है से भारी मात्रा में कम हुआ है और भारी मुनाफा हुआ है, यानी कहे मतलब है कि लागत कम लगल मुनाफा ज्यादा
0: हो गल, और बाजार में देखा कि एक मांग भी जैसे अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ लगल है, और अगर उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर बात करिए हमें सुमेंद्र भाई, तो देखा अगर मैं कहा है कि सरल गोबर हो चाहे कंपोस्ट खाद जो है ओकर उपयोग हम कर सको जोताई या कोड़ाई के समय में, ताकि हमारे फसल जो है बढ़िया तरीके से रहे, और सिंचाई की अगर हम बात करिए तो कर में जो है से 1 से 3 बार सिंचाई अगर जब नए पानी पड़ लगल मैंने कि कहा कि पानी बहुत कम वगैरह में खर्चा हुआ है, तो उस समय जो है से 1 से 3 बार तक सिंचाई तू जो है से कर सको है, और नियंत्रण का जो खरपतवार के जो है ओकर बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जो है से अपन तू निराई गुराई कर सको है, ज्यादा निराई गुराई भी एकदम जरूरत नहीं पड़ो है, और कटाई जो है से हमेशा हम इनके ध्यान रखे के चाहिए कि जब फल पक जाए जब दाना पूरा कठोर हो जाए तब हम इनके जो है से कटाई करे के चाहिए, और अगर से एकर लाभ के बारे में अगर हम बात करें किसान भाई बहन सबके संगे, तो लाभ देखा है कि कम पानी में भी अच्छा पैदावार हो गलो, फिर सूखा सहन करे भी एकदम जैसे क्षमता ज्यादा है, फिर कम लागत तो खेती में है, तो इस तरह से देख करके हमें जैसे किसान भाई बहन सबके जैसे मोटा अनाज की खेती करे के चाहिए और अधिक से अधिक लाभ उठावे के चाहिए।
1: इसलिए देखो ये भी है कि मोटा अनाज की जब खेती किसान भाई में करो थे न, तो ये भी ख्याल रखे चाहिए कि भाई मोटा अनाज की खेती जैसे तुहर एक किसान या दो किसान से ना हो पाओ, अगर जैसे जितना बंजर भूमि है या जितना जे जमीन में खेती ना हो लो थोड़ा सा होकर मैं कहा है कि बढ़िया से जोताई कोड़ाई करके और किसान के जो है प्रेरित करके श्याम भाई वगैरह खेती के बढ़ावा हम दे सको ये किसान भाई में दे सको थे।
0: तो देखा अब हम इनके जैसे कार्यक्रम किसान वाणी से जाए भी बेरा हो गला है, तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमारा श्याम के
1: और हमारा यशमेंद्र के
0: अनुमति दथिन जोहार।

आप सुने थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे शुरू की घड़ी में 5:32 हुए हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी दोस्त भाई सभी के जोहार प्रणाम नमस्कार और आज फिर से हमारे संगे आल हथिन कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुमेंद्र भाई तोहरो जोहार प्रणाम
1: हमने से जोहार प्रणाम श्याम भाई सब किसान भाई बहन के संगे संगे तोहरा भी तो हमें जानकारी लेके आ लिए कि देखा कि प्राकृतिक जो शत्रु हो वो है और एक द्वारा जैसे कीट के कैसे रोकथाम करे चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करबे कि जो प्राकृतिक शत्रु है जैसे शिकारी कीट परजीवी और सूक्ष्म जीव तो एक कीट के जो रोकथाम खातिर का है कि पर्यावरण अनुकूल और मुक्त विधि हुआ है जैसे यह विधि हानिकारक हुआ है और कीटनाशक के उपयोग के कम फसल के पैदावार खातिर सुधार खातिर हुआ है।
0: और फिर देखा कि अगर बात करिए अगर प्रकृति के बारे में बात करिए जैसा कि प्रकृति शत्रु और ओकर जो कार्य प्रणाली जो है देखा कि जैसे शिकारी है सीधे हानिकारक कीट के जैसे घुन और ओकर जो अंडा जो हुआ है ओकर जो है से खा जा है और एकन में जो है से लेडी बर्ड बीटल और ग्रीन लेसविक जो है से मकड़िया और पक्षी के जो है से एक में प्रमुख है।
1: हाँ हाँ एक खातिर का है कि जे कहा जा सको कि ये सूक्ष्म जीव हुआ है जैसे बेसिलिस हुआ है थुरिंजीम हुआ है बैक्टीरिया फफूंद हुआ है ये कहा है कि कीट के जो संक्रमित करके ओकर में बीमारी फैलाऊ है ओकर कीट मर जा है। अगर बात कहा है कि प्राकृतिक शत्रु के जो बढ़ावा देवे वाला जो तकनीक हुआ है संभव रासायनिक कीट के जो कम उपयोग करे चाहे किसान भाई बहन के जैसे कहा है कि स्ट्रेपकम वाले जो जहरीला कीटनाशक हुआ है अत्यधिक उपयोग करे के बाद क्या है कि प्राकृतिक शत्रु के भी मार दे अरे एक कहा जा सको खासतौर पर कि अगर एक साथ है पर हर साल अलग अलग फसल उगावे खातिर मुख्य फसल के साथ साथ ये एक सहायक फसल हुआ है कहे कि प्राकृतिक शत्रु के लिए आवास और भोजन पराग और मकरकंद उपलब्ध भी एकर में हो है।
0: और देखा कि जैविक नियंत्रण के बारे में अगर हम इन बात करिए सुमेंद्र भाई तो देखा कि व्यावसायिक रूप से जो है से उपलब्ध जैसे कीटनाशक के प्रयोग हमें हमेशा करे चाहिए जे हानिकारक कीट के जैसे नियंत्रण करो है और एक में जो कहा हुआ जिस मैंने कहे मतलब है कि हमें कि हमेशा जो है से जैविक जो थी हुआ है कीटनाशक दवा जो हुआ ओकरा हमें कि हमेशा उपयोग करे के चाहिए। और देखा अभी किसान भाई बहन सब जितना भी आते हैं अधिकतर ज़्यादा जो है से रासायनिक कीटनाशक दवा के उपयोग करे खोजो थे लेकिन उन नहीं करे के चाहिए जे गलत है ओकर साथे साथे का हुआ ने कि देखा जे लाभदायक कीट है वो भी जो है से मर जाए ताकि हम फिर हम इनके जो है से नुकसान हो वो है। फिर आगे देखा हम इन बात करबे सुमेंद्र भाई लेकिन ओकर पहले हम सुनो ये कुछ गीत और किसान भाई बहन सब इनके भी जो है से देखा कि अब हम इन गीत के दौरान ले जाए ताकि कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन भी हो एक बहुत ज़्यादा जरूरी है
1: तो और पहले हमें एक जरूरी संदेश सुन लीजिए समय।
0: हाँ

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत,

0: ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: देखा सुरेंद्र भाई, हम जो ऐसे गीत भी सुन लिए और जरूरी संदेश भी सुन लिए, और देखा अगर हम घड़ी देने देखो तो इनके पास ज्यादा समय भी न है, तो काहे ना समय रहते हम इनके पास ये कुछ जानकारी है ओकरा हमें अपन किसान भाई बहन तक जरूर से जरूर पहुंचाइए। और जगह बारे में हम कुछ चर्चा कर भी चुका लिया पहले, और वो है कि हर बूंद की कीमत का हुए ओकर बारे चर्चा हम लेकर लिए। तो देखा कि चला बिना देर कुबेर कर ले ये चर्चा पहुंचावे अपन किसान भाई बहन।
2: हाँ,
3: श्रोताओं, हम आए हुए हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से, में जो यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग इस भीष्म गर्मी में किस तरह से पानी की बचत कर सकें। और ये हमें बता रहे हैं ब्रजेश कुमार जी, जो यहाँ पे कार्यरत हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है ब्रजेश जी, साथ ही नमस्कार।
4: नमस्कार मैडम, जोहार।
3: जोहार। और सबसे पहले हमें बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ कार्य कर रहे हैं।
4: जी, मैं इस विभाग में कम से कम 8-10 सालों से कार्य कर रहा हूँ।
3: जी, बहुत अच्छी बात।
4: पानी जो एक जल ही जीवन है जिसको बोला जाता है, तो पानी के बिना जीवन अधूरा है। और एक पानी ही नहीं, पानी के अलावा जो हम लोग साफ पानी जिसको बोलते हैं। हाँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे पानी पीने के कारण बीमारी हो जा रही है, जैसे कि टाइफाइड, उल्टी होने लगना, बहुत सारी इसमें हो जाती है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि साफ पानी,
3: बिल्कुल,
4: या आप घर में नल से पिए या आपके पाइपलाइन के द्वारा जो भी सप्लाई के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें हम लोग की प्राथमिकता ही रहती है कि जो भी पानी पी रहे हैं उसमें जो है सो साफ पानी पिए और निरोग रहें और पानी को बचाएं भी।
3: सबसे बड़ी बात यही है कि पानी हम लोग को बचा के चलना भविष्य के लिए भी, क्योंकि दिन प्रतिदिन देखिए वजह से जल स्तर नीचे ही चला जा रहा है, घटते ही चला जा रहा है। और जिस तरह से हर घर का एक पानी के बिना तो शायद जीवन, जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो हमें बताइए कि ये जो पानी है वो किस तरह से हम लोग बचत कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।
4: देखिए, सबसे पहले कि पानी का जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है।
3: बिल्कुल,
4: बरसात में 2-3 महीना बारिश होती है और बह के वो कहीं चली जाती है।
3: जी।
4: तो हम लोग को यही है कि जितने भी अभी नए बिल्डिंग बन रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसमें हम लोग को यही करना है कि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना है। आपके घर जब भी पास करा रहे हैं, नक्शा पास करा रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बना लीजिए उसमें कि आपको बारिश का पानी जो है सो ग्राउंड के नीचे चला जाए। और आप बता रहे थे कि अभी 300-400 फीट के नीचे पानी नहीं मिल रहा है, ड्राई जोन हो जा रहा है। तो ऐसा है कि इस मतलब क्षेत्र में पहाड़ी इलाका रहता है।
3: बिल्कुल,
4: पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पानी बारिश तो होती है, एक जो वार्षिक औसत वर्षा है वो तो होती है 140। ये तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है सो बह के चला जाता है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि उसको रोकने का।
3: बिल्कुल।
4: और रोकने का उपाय है कि नदी, तालाब, जो भी छोटे छोटे सोर्सेस है हमारे, उसको बरसात के दिनों में उसको संचय करके रखना।
3: बिल्कुल।
4: अगर बचाना है पानी तो फिर घर के लेवल से अगर हम बात करेंगे तो उसमें देखते हैं कि आपका कहीं पाइप टूटा हुआ है, तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पानी बूंद बूंद टपकते रहता है, उसके बाद हम लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह भी जहाँ है जहाँ पानी के लिए बहुत सारी लंबी लाइनें लगती है और उन लोग को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। तो अभी बहुत देखिए पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश होती है। जिस समय बारिश का मौसम होता है उस समय धूप आ जाता है। ये जो मौसम का सर्कुलेशन है वो अभी देख रहे हैं कि अल नीनो आ रहा है, तो अभी बारिश हो जा रही है, जब बरसात आएगी तो बारिश होगी नहीं।

0: तो हम लोग को उसके लिए अभी से सतर्क रहना पड़ेगा, अपने
1: बिल्कुल
0: बच्चों को भी बताना पड़ेगा अगले भविष्य के
1: हाँ
0: लिए कि आपको पानी कैसे संचय करना है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो खुला नल ना
1: हाँ
0: छोड़ें,
1: हाँ
0: अगर आपके घर में आरओ की सुविधा है
1: हाँ
0: तो उसका जो वेस्ट
1: वेस्ट पानी
0: पानी,
1: हाँ
0: वेस्ट पानी अगर निकल रहा है तो आप छोटा सा किचन गार्डन लगा के रख सकते हैं,
1: हाँ हाँ
0: उसमें से आप जो वेस्ट वाटर है उसको उसमें डाल सकते हैं, फल
1: हाँ
0: सब्जियां लगा सकते हैं, जो भी वेस्ट सब्जी किचन में यूज होता
1: हाँ
0: है तो धोने वगैरह जो भी होता है उसको हम पानी को पाइप के माध्यम से कहीं अपने जो छोटे से जो जमीन रहता है उसमें
1: हाँ
0: आप उसको बहा सकते हैं। बहुत सारा ये है कि बड़े बड़े नगरों और शहरों में होता है कि जो भी खराब पानी बहता है उसको ट्रीट करके फूल पेड़ पौधे में
1: बिल्कुल
0: देने के लिए यूज किया जाता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: लेकिन अभी तो इतना हमारा शहर तो डेवलप नहीं है, उतना
1: बिल्कुल
0: सारा ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी हम लोग यही कर सकते हैं कि अपने घर के जमीन स्तर से, घर
1: हाँ
0: में आप नल खुला ना छोड़े, ब्रश या शेविंग करते समय जो है सो
1: वो पानी बहते नहीं रहना
0: वो बहते
1: चाहिए।
0: नहीं रहना चाहिए, वो उसको बंद कर दें, और जहां भी लीकेज हो रहा है
1: हाँ
0: वहां आप लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं, बाल्टी के जगह शावर का यूज करें नहाने के
1: बिल्कुल
0: लिए, और बहुत सारी ये है जो आप उसको ठीक कर सकते हैं।
1: हाँ
0: आदमी को जागरूक होना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: नहीं तो अभी जैसे कि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से पर LPCD पानी देना बहुत मुश्किल हो गया है,
1: बिल्कुल बहुत
0: सरकार
1: जरूरी
0: के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और
1: इसके अलावे ब्रजेश जी और किस क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हम ये पानी का बचत कर सकें।
0: देखिए जब पानी मूल स्थिति पर आते हैं, जब बारिश होगी ही नहीं तो आप ये क्या कीजिए,
1: पानी
0: उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घरों में या अपने आसपास कम से कम 4-5 पौधा लगाएं।
1: बिल्कुल
0: पौधा लगाने से क्या हो गया कि आपके जो परिस्थिति है
1: हाँ हाँ
0: पर्यावरण की परिस्थिति वो आपकी सही हो जाएगी, और मौसम आपका ठीक रहेगा उसके हिसाब से आपकी बारिश अच्छी होगी।
1: जी
0: तो एक बहुत सा सहायक चीज है कि आपके मतलब क्षेत्र में वनों का होना,
1: बिल्कुल
0: और
1: हाँ
0: जहां वन होते हैं वहां पानी झूम के पानी वर्षा
1: हाँ
0: होती है
1: हाँ
0: ये कहा गया है। तो आप इसमें सभी को जागरूक कर सकते हैं कि पेड़ पौधा लगाएं और उसको बचाएं, कटने से बचें, अगर कट भी रहा है तो उसको उसके हिसाब से उसको
1: और पेड़
0: दोगुना
1: पौधे
0: लगाएं,
1: लगाए हाँ
0: जिससे क्या हो गया कि पर्यावरण मेरा संतुलन रहेगा,
1: बिल्कुल हाँ
0: और
1: हाँ
0: संतुलन रहने के कारण अच्छी बारिश होगी, और अच्छी बारिश होगी तो खुद ब खुद
1: वो
0: आप
1: पानी की समस्या थोड़ा
0: हाँ
1: कम हो जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। उम्मीद करते हैं कि सभी जो भी घर में भी रह रहे हैं चाहे गांव घर में भी आप देख लीजिए कि बहुत दूर दूर तक हम देखते हैं कि सब महिला लोग पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाती
0: जी
1: हैं। तो अगर हम लोग इस सब चीज पे ध्यान देंगे तो अगर पानी बचता तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और जो भी जहाँ भी चापानल वगैरह है अगर वो खराब भी है तो उसको बनवा लें और ताकि उसका पानी यूज कर सकें।
0: जी और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो क्षेत्र है ड्राई जोन हो जा रहे हैं, ड्राई
1: जी
0: जोन 300, 400, 500, 600 फीट में जा
1: तब
0: रहे हैं
1: भी नहीं पानी
0: पानी
1: निकल रहा
0: निकल
1: है
0: रहा है,
1: हाँ
0: तो गांव के साथ साथ शहर में भी हमें जागरूकता अभियान चलाना
1: बहुत
0: चाहिए
1: जरूरी है हाँ
0: कि आप पेड़ पौधा लगाइए, पानी को बचाइए, ऐसे स्लोगन को लिखा के और एजेंसियों के माध्यम से, बहुत सारे जो एजेंसी है सरकार के बहुत सारे ये भी हैं अंग है, उसके माध्यम से हम लोग जागरूक कर सकते हैं कि हमें पानी बचाना है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि पानी बचाना एक आदमी का काम नहीं है,
0: जी
1: सभी लोगों को चाहे परिवार के सभी सदस्य हैं उन्हें चाहे बाहर के जितने भी खेती खेतिया लोग हैं वे सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए करें ताकि पानी का बचत होगा तो खुद का फायदा होगा। पानी के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। आप देख लीजिए किसी एक दिन अगर लाइन कट जाता है और पानी नहीं रहता है तो मतलब समझिए कि पानी के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें पानी की बचत

0: पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और सभी सबसे खासकर बच्चों लोग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई ब्रजेश जी कि किस तरह से हम लोग पानी बचा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी ग्रामीण श्रोता भी इस पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद।
2: हाँ तो देखा सुमिंदर भाई, अभी हमें जानकारी बहुत बढ़िया सुन लिए कि पानी की हमें बचत कैसे करिए और कैसे अगर फिर आगे जाकर के हमें उपयोग करिए। और आगे हमें बात कर पे देखा सुमिंदर भाई कि समसामयिक खेती, देखा कि हमें लिए किसान भाई बहन सब के लिए देखा कि बहुत ही जरूरी है कि हर समय के अनुसार हमें खेती करिए, जैसे फसल चक्र हो गया उसी टाइप से। तो देखा जैसे भी बरसात के समय है तो हमें जितना भी किसान भाई बहन सब होते हैं कि एकदम सब धान धूरा में एकदम जोर शोर से सब लगल थे ना कि हम इनकी खेती अब करे के है। तो देखा कि बहुत किसान भाई बहन सब जो थे इनसे अपन धान के बिचड़ा कर भी दिले थे, और बहुत किसान भाई बहन सब के धान के बिचड़ा जैसे तैयार भी हो गया है, और बहुत किसान भाई बहन सब जैसे धान के बिचड़ा भी करे के तैयारी भी लगल थे। तो धान के जो खेती है ओकर बाद भी हमें के हमेशा ध्यान देवे के चाहिए कि धान के जब खेती लगा लिया हमें फिर ओकर जब देख रेख हो गया, जब ओकर कटाई हो गया, तो लेकिन अभी से भी हमें के योजना बना कर रखे चाहिए सुमिंदर भाई कि धान के बाद जब हम रबी की खेती लगेबे तो ओकर तैयारी हमें कैसे करिए। तो हर समय के अनुसार जो है से किसान भाई बहन सबको ध्यान देवे के चाहिए और कोशिश रहे के चाहिए कि जब भी कोई फसल लगाइए हमें तब फसल बीमा योजना जरूर करिए, जैसे कि आपदा विपदा जब आ जाए, कभी आंधी है, तूफान है, कभी ज़्यादा वर्षा हो गलो, चाहे कीट मकोड़ा जो है से फसल के बर्बाद कर दलको, तो वो सब भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इन जो है से अपन फसल के जो है से फसल बीमा जरूर करा कर रखिए ताकि हम इनके जो है से कुछ फसल के नुकसान के भरपाई जो है से हम इनके भारत सरकार के देने से जो है से ओकर जो मिलल जाए ओकर लाभ हमें उठाइए।
3: सही बात है, कृषि के जो महत्वपूर्ण जैसे बतैल तो कि किसान भाई बहन समय समय पर अपन खेती करो थीन, और ओकर में कहा है कि कहा जा सको कि खेत के उन्नत तरीका जो नया नीति हो है जलवायु परिवर्तन से एक में बचाव हो है। दूसरा बात कहा है कि मौसम और जलवायु के आधारित समसामयिक खेती है श्याम भर, तो खेत में जो मौसम के ध्यान रखे पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। जैसे हम मौसम के ख्याल करबे, जैसे अभी उदाहरण बता दे रही हो कि अभी दो दिन से बारिश बंद है कोई कोई क्षेत्र में, तो किसान भाई के पास जुगाड़ है जो जोंडरा लगे थे जो मकई लगे लिए थे, तो उनका सबसे उत्तम चीज कहा है कि मकई कोड़े के यानी मकई निराई गुड़ाई करे के बहुत समय दे ले है। तो ठीक उसी तरह से कहा है कि किसान भाई के जो मौसम हो है मौसम के विशेष ध्यान रखे पड़ता और मौसम के हिसाब से खेती करे पड़ते है। दूसरा बात कहा है कि जो वर्षा आधारित फसल हो है जिसे सूख जाए या कम बारिश की स्थिति में धान के नुकसान हो जाए कहा है ओकर खातिर ओकर एवज में हम मक्का बाजरा दलहन के खेत के जोर शोर से एक में खेती कर सको ये हम।
2: हाँ भाई हाँ, और देखा कि बहुत ही बढ़िया है कि हम इनकी जो है धान फसल के साथ साथ जो है से हमेशा ध्यान देवे के चाहिए कि जिस समय के अनुसार जो खेती है वो जरूर से जरूर करिए। जैसे अभी बतेला कि मक्का है, बाजरा है, फिर अभी को साथ में जो देखा कि उड़द भी लग रहा है, घंघरा है, बर्रा है, तो इस तरह से जो हम इनके किसान भाई बहन सबके जैसे हमेशा ध्यान देवे के चाहिए कि फसल मिंजरी फसल जो हुआ है वो हमें जरूर लगाइए, ओकरा में कहीं चूक हमें ना करिए ताकि एक फसल में कहीं अगर हम इनके नुकसान हो हुआ है तो दूसरा फसल में जाकर के हम इनके भरपाई हो सके।
3: इसे ही कहा है समय कि समेकित कृषि प्रणाली के तहत हो जाए, जैसे एक में कहा है कि वर्तमान के फसल के निर्भर करो है, ओकर बाद जो है से फसल उत्पादन जैसे हो गया पशुपालन, डेयरी मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, और एक से कहा है कि जो किसान भाई बहन के जो आधुनिक खेती हुआ है एक में किसान भाई बहन अगर कहा जा सको कि मिट्टी जो हुआ है किसान भाई बहन जिसे हमें अपन तरीके से जैविक खाद कंपोस्ट खाद खेत देख तैयार करो ये ठीक उसी तरह से जैसे मौसम के हिसाब से मुर्गी पालन हो गलो, बकरी पालन हो गलो, शुकर पालन हो गलो, तो किसान भाई बहन ओकर वातावरण के देखते हुए जैसे कौन क्षेत्र में कौन सा नस्ल उनका रखना है, कौन सा नस्ल का चुनाव करना है, चाहे शुकर पालन ही हो कहे ना हो, तो एक कहा है कि समेकित कृषि के तहत ये बहुत बेहतर खेती हुआ है जिसे पशुपालन और खेती बाड़ी एक दूसरे के दोनों पूरक थे।
2: और हमें भी चाहिए हम इनके कि जैसे खेती बाड़ी के साथ साथ जैसे हमेशा ध्यान देवे के चाहिए कि जैसे कि ओकर जो अलग से जो व्यवसायिक है वो व्यवसायिक खेती है वो इनके करे चाहिए। जैसे कि देखा अभी समय में जैसे पशुपालन जैसे बतेला सुमिंदर भाई वो बहुत ही जरूरी है। तो सुमिंदर भाई देखा कि हमें आगे और भी बात तो करबे करबे, ओकर पहले हमें देखा समय भी देख रहे हैं अब जाए भी समय हो रहा है, तो कहे ना सुनो एगो बढ़िया गीत।
3: हाँ।

0: तो उसमें नर्मदा देखा कि यह गीत के साथ हम जैसे कार्यक्रम खेती बाड़ी से भी जाए समय हो गया, तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा श्याम के
1: और हमारा यशमेंद्र के
0: अनुमति दथिन
1: जोहार
0: जोहार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन के आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित AI नीति 2026-31 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1,150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को चुनौती देने वाली

0: याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। रांची में आयोजित 39वें राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप के छठे राउंड के ओपन मुकाबले में आज अयांश ने सिद्धार्थ अनुज, जोहान ने जिनसन, रयान ने आरव रवि और श्रेयांश दास ने अर्जुन को पराजित किया। वहीं दिनेश और शफीक के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर गर्ल्स मुकाबलों में नंदी प्रीतिका ने अनवी, अर्षिता ने अदीना, अंशिता ने ईशी सिंह, पविष्णा ने अरावा और सयाद ने आस्था को शिकस्त दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा वाणी।

कार्यक्रम युवानी सुनने वाले सभी युवा दोस्तों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 9 जुलाई है और आज के दिन राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मुख्य रूप से 9 जुलाई को ही मनाया जाता है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। इस दिन छात्रों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में छात्र और शिक्षा के सम्मान में कुछ अन्य तिथियां भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे 15 अक्टूबर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 7 नवंबर महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा स्कूल में प्रवेश लेने की ऐतिहासिक तिथि को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, विद्यार्थी दिवस मनाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2017 को लिया गया। इस दिन महाराष्ट्र के सभी विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिताएं, कविता पाठ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, बातें तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, इस संदेश के बाद चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में आम नागरिकों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आम नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अपने दैनिक जीवन में 3R जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांत को अपनाकर लोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के तरीके, जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का बहिष्कार करना, कपड़े के थैले का उपयोग करना और घर पर कचरे को अलग करना सीधे तौर पर इस वैश्विक संकट में योगदान दे सकते हैं। आम नागरिक इन तरीकों को अपनाकर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं, जैसे सिंगल यूज एकल उपयोग प्लास्टिक से परहेज करना चाहिए, कपड़े के थैले, खरीदारी करते समय हमेशा घर से कपड़े या जूट का थैला साथ ले जाएं, साथ ही प्लास्टिक थैलियों और प्लास्टिक रैपिंग से बचना चाहिए। बोतल बंद पानी खरीदने के बजाय धातु या कांच की पुनः उपयोग होने वाली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। स्टील या बांस के स्ट्रो के बजाय, जैसे कि जूस या नारियल पानी पीते समय अधिकतर लोग स्टील या प्लास्टिक के स्ट्रो का यूज करते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए और इसकी जगह स्टील, कांच या बांस के स्ट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन प्लास्टिक के डिब्बों या बोतलों में घर में सामान आता है, उन्हें फेंकने के बजाय रसोई में दाल, मसाले आदि रखने या पौधे लगाने के काम में उनका उपयोग करना चाहिए। कचरा अलग करना, जैसे गीले कचरे, सब्जियां, फल और सूखे कचरे, कागज, प्लास्टिक, धातु, इन सबको हमेशा अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। और अच्छा होगा अगर सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, धातु के सामानों को हम कबाड़ी वाले को दे दे, ताकि इसका रिसाइकलिंग किया जा सके। इसके साथ ही माइक्रोबीट्स का भी बहिष्कार करना चाहिए, जैसे कई फेस वॉश या टूथपेस्ट में छोटे माइक्रोबीट्स होते हैं, ऐसे उत्पादों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना चाहिए। प्राकृतिक उत्पाद जैसे प्लास्टिक टूथब्रश की जगह हम बांस, नीम, सखुआ इत्यादि के दतवन और प्लास्टिक के कप प्लेट की जगह पत्तल या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। कपड़े के सैनिटरी उत्पाद जैसे प्लास्टिक युक्त सैनिटरी पैड के बजाय कप या कॉटन पैड को ही अपनाना चाहिए। जागरूकता और सामाजिक भागीदारी भी अहम भूमिका निभाती है। दूसरों को शिक्षित करना, अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को प्लास्टिक प्रदूषण के नुकसान और प्लास्टिक मुक्त जीवन के फायदों के बारे में जागरूक करना चाहिए। अपने आसपास के समुदाय में समय समय पर सफाई अभियान चलाना चाहिए। सरकार के बनाए नियमों का समर्थन भी करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों और स्थानीय कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तब जाकर प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा। दोस्तों, इसके बाद आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। बीएससी

0: इंस एग्रीकल्चर में करियर की संभावनाएं। भेंट वार्ताकार हैं विनीत कुमार और भेंट करता है अशोक कुमार।
1: श्रोताओं, आज के युववाणी कार्यक्रम में हमारे बीच हैं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत कुमार, जो कि एग्रीकल्चर विषय से ताल्लुक रखते हैं और इस विषय में इस महाविद्यालय में HOD भी हैं। विशेष हम विनीत सर से ही जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम अपने विषय पर बातचीत करें, विषय वस्तु पर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को दें।
2: जी नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम विनीत कुमार हुआ, मैं आईसेक विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हूँ और मेरी पढ़ाई अभी मास्टर्स मेरा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी विषय में हुआ है। इसके पूर्व मैं आईसेक विश्वविद्यालय ज्वाइन करने के पहले मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में था, जहाँ पे मैं एक गेस्ट लेक्चरर के तौर पर कार्यान्वित था और मैं मेरी PhD चाइना से है, गुइजो यूनिवर्सिटी। इसके पहले मैं थाईलैंड में था, थाईलैंड में मेरी पढ़ाई और मेरा काम भी था एज अ रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट, ये था चेंगमाई यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं फिर भारत आया कोरोना होने के कारण और तब से मैं भारत में ही हूँ।
1: धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए हमारे श्रोताओं। विनीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका। सर, हमारा आज का जो विषय है, टॉपिक है, जिसे 12th के रिजल्ट निकल चुके, रिजल्ट पास हो। अब 12th के बाद जो छात्र हैं जिन्होंने साइंस विषय से किया है, उनके लिए एग्रीकल्चर काफी बड़ा स्कोप रखता है, बहुत सारी करियर की संभावनाएं भी।
3: हाँ सर, तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपसे वो है कि एग्रीकल्चर का कोर्स क्या है और कौन से विद्यार्थी इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, इसके बारे में।
2: जी धन्यवाद सर आपके प्रश्न के लिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर और मार्गदर्शन देने का मौका मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं, जिनका बैकग्राउंड और जिनका स्ट्रीम साइंस से रहा है, विज्ञान ISC या +2 अगर उन्होंने विज्ञान से किया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि उनका बायोलॉजी था या नहीं था। हमारी पढ़ाई उतनी कठिन नहीं होती एग्रीकल्चर की कि अगर किसी का बायोलॉजी भी नहीं है, जीव विज्ञान भी उसके सब्जेक्ट नहीं है, तो वो ना पढ़ पाए, तो ये उसके लिए काफ़ी आसान रहता है।
1: अच्छा,
2: तो मैं वही संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जिसका विज्ञान था या विज्ञान है अभी क्लास 12th में, वो लोग दाखिला ले सकते हैं हमारे पास और एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 4 साल का है, 4 साल में मतलब 8 सेमेस्टर्स होते हैं और 7वें सेमेस्टर से हम अपने बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए बाहर भेज देते हैं, जिससे कि उन्हें प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज है वो उन्हें मिल पाए। और फिर 7वें सेमेस्टर में 6 महीना जब वो बाहर रह जाते हैं, फिर उन कोई ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद जब हमारे पास आते हैं तो वो एक वेल ट्रेन और स्किल्ड आप कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी हो जाते हैं
1: जी।
2: और फिर 8वें सेमेस्टर में हम लोग फिर से 2 प्रोजेक्ट करवाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम एक होता है हमारे पास में, जिसमें कि हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे, मान लीजिए कि अब हमारे पास ज़्यादा पैदावार हो गया किसी भी फसल का, उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास टमाटर या आज आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत
1: जी बिल्कुल,
2: तो अगर वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाए, मार्केट में उसे कोई खरीदने वाला ना हो, तो हम उसे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में बेच सकते हैं या हम खुद की कंपनी वैसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं या बना सकते हैं, जिसमें कि हम उस खाने को या जो हमारा फसल था स्ट्रॉबेरी जो हमने उदाहरण लिया, उसे हम लोग उसके बिस्किट्स बना सकते हैं या उसको हम लोग जैम बना सकते हैं। अगर एप्पल हमारे पास है तो उसका जैम एंड जेली का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी पे ही हमारा काम होता है।
1: बहुत को अच्छा, अब एक बार बताएंगे कि प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं जहाँ से एग्रीकल्चर में स्नातक और मास्टर डिग्री हासिल की जा सकती है।
2: जी बिल्कुल, तो मैं तो शुरुआत करूंगा भारत के सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय से, जी बी पंत। तो ये भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे भी आपको BSc और MSc की डिग्रीज मिल जाती है, स्नातक और स्नातकोत्तर की। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे अगर झारखंड, ये आपका उत्तराखंड में जी पंत नगर, जी बी पंत। तो उसके अलावा आप हमारे झारखंड में अगर देखेंगे तो ये भी हमारे पास है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कांके में है। ये भी काफ़ी विख्यात है अपने रिसर्च के लिए और जिस तरह की यहाँ पे पढ़ाई दी जाती है बच्चों को वो। और फिर देहरादून में भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं।

0: और अगर आप यूपी में देखें, हमारे बिहार में भी देखेंगे तो वहाँ भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है।
1: बहुत सारे विकल्प हैं,
0: बहुत सारे बच्चों के पास कई सारे विकल्प हैं। और मैं तो बोलूंगा, मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो जब से मैं एग्रीकल्चर में आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में अगर भारत की बात की जाए तो एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर बच्चे अगर मायूस भी हो रहे हैं कि वो मेडिकल नहीं निकाल पाए हैं या वो इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है कि वो अपना स्ट्रीम चेंज करके एग्रीकल्चर में आ जाए, जिसमें कि भारत में बहुत ही ज्यादा उपयोग है अभी। और आप देखोगे कि अगर टेक्नोलॉजी, अगर प्रौद्योगिकी अगर भारत में बहुत ज्यादा उन्नति के दौर पे है, लेकिन अगर वो खाएंगे नहीं, अगर वो उपज ही नहीं कर पाएंगे तो वो क्या ही कमाएंगे। अगर मान लीजिए कि पैकेज किसी का बहुत ज्यादा हो गया और उतना उपज ही, वो फसल के दाम आजकल देख सकते हो आपके बहुत महंगे होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई अभी मैं तो बताऊंगा कि ये बहुत अभी ज्यादा इसका डिमांड रहने वाला है, और डिमांड है भी आज भारत में।
1: अच्छा, नई शिक्षा नीति में जिसे आपने कहा डिमांड तो है, उपयोगिता है, तो इसकी उपयोगिता को किस रूप में देखते हैं
0: सर? नई शिक्षा नीति में अगर जैसे हम लोग नई शिक्षा नीति में हम लोग जैसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया है, है ना। तो हम लोग जो जैसे जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो हम लोग उसको स्किल्ड बनाते हैं। आज शिक्षा तो थ्योरी के तौर पे कहीं भी मिल जाएगी आपको, वो इंटरनेट में भी उपलब्ध हो जाती है, आप घर बैठ के भी वो शिक्षा आपको मिल जाएगी। लेकिन जो स्किल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, फील्ड में ले जाना, जो मैंने आपको बताया सातवें सेमेस्टर में जैसे बच्चों को बाहर भेजा जाता है, तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रेन किया जाता है जो, तो उस जगह पे वो लोग जैसे कुछ बच्चे हमारे देवघर में गए थे, तो जो स्किल, जो कुछ कुछ चीज हम लोग सारी चीजें, तो अभी आईसेक यूनिवर्सिटी नई नई बनी है, तो वो सारी फैसिलिटीज और वो सारे चीजें या संसाधन हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन जितना भी हम लोग दे पाते हैं, लेकिन अगर कुछ बच भी रहा है तो वो उसके लिए हम लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो मैं तो बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति से हम लोग बच्चों को स्किल यहाँ पे बहुत प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण वो कहीं भी जाए तो वो हमारा तो नाम रोशन करे ही करे, झारखंड का भी नाम रोशन करे,
1: जो ये डिग्री हासिल कर लेते हैं। तो इस डिग्री के बाद, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रोजगार की संभावनाएं युवाओं के लिए मौजूद होती है?
0: जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 12th के बाद अगर हम किसी मध्यम वर्ग परिवार से आ रहे हैं तो हमारे माता पिता के दिमाग में यही रहता है कि अगर मैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराऊं तो 4 साल के बाद उसे वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैकेज कितना रहेगा, अगर वो डॉक्टर भी बन रहा है तो कितना दूर जाएगा। तो ये सवाल काफी जरूरी था। तो एग्रीकल्चर करने के बाद हमारे भारत में बहुत सारी नौकरियां हैं, तो उसकी जानकारी मैं थोड़ी सी आपसे साझा करूंगा। तो सबसे पहला तो मैं बताऊंगा आपको, एग्रीकल्चर एनालिस्ट का एक जॉब लग सकता है जिसमें पैकेज आपका 4 लाख से 6 लाख प्रतिवर्ष ये रहता है,
1: सालाना।
0: जी बिल्कुल। उसके बाद कई सारे सेक्टर्स में और कई सारे जगहों में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की बहुत डिमांड होती है, ठीक है। जैसे आप बैंकों में भी देखेंगे तो वहाँ पे एक पोस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रहता ही रहता है, जिसकी नियुक्ति कई सारे परीक्षाओं के द्वारा होती है। इसमें पैकेज की जहां तक बात की जाए तो पैकेज बहुत ही अच्छा है। अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इसकी तैयारी करते हैं तो वहां पे 9 लाख से 14 लाख रुपए तक का सालाना इतना नौकरी लग सकता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मार्केटिंग का बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज रहता है और वो टैलेंटेड रहते हैं, वो बॉर्न उनमें वो प्रतिभा रहती है कि वो बचपन से ही मार्केटिंग, उनके लिए बेचना कुछ भी बहुत आसान है, तो मार्केटिंग लाइन भी इसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वहां पे बनाया जाता है, जिसमें कि शुरुआती पैकेज तो मैं बताऊंगा कि थोड़ा कम है, जैसे 3 लाख से शुरू होता है वो, फिर जाके 6 लाख तक मैक्सिमम जाएगा, लेकिन
1: स्टैंड होने के लिए,
0: हाँ स्टैंड होने के लिए। और इसमें क्या होते हैं ना, आपको इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे आप एक टारगेट आपको मिल रहा है, आप वो टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको उसका एक बोनस भी मिलेगा, तो मार्केटिंग लाइन में जा सकते हैं। इसके बाद अगर कई सारे बच्चों को रुझान होता है कि वो साइंटिस्ट बने, जैसे मैं अपनी बात भी बताऊंगा कि मुझे वैज्ञानिक बनने का बहुत ही इच्छा है, तो आगे जाके मैं वैज्ञानिक भी बन सकता हूँ यहाँ से।
1: चलिए, शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें ICAR इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं भारत में, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जितने भी इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, तो उसमें ICAR साइंटिस्ट का बहुत सारा पोजिशन होता है। तो इसमें मैं पैकेज तो नहीं बताना चाहूंगा कि कितना होता है, बिकॉज कारण यही है पैकेज नहीं बताने का, पैकेज हालांकि बहुत अच्छा है यहाँ पे, उसके मन में जो इच्छा होती है कि हाँ उसे कुछ खोजने की जो एक ललक होती है ना, तो वो

0: बच्चों में वो एक पता चल जाता है। तो एक ICR साइंटिस्ट का भी है जिसमें कई सारे पोजीशंस होते हैं, ए से लेकर काफ़ी ई तक होते हैं, मतलब आप पोजीशंस वो प्रमोशंस होते होते बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर वो MSc कर लेते हैं एग्रीकल्चर से ही, तो उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं कई सारे ICR इंस्टीट्यूट्स में भी, जहाँ पे उन्हें महीने के 32,000 रुपए मिल सकते हैं शुरुआती, और बाद में जाके 38,000 रुपए SRF बनने के बाद। तो इतने सारे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च असिस्टेंट है, जैसे कि मैं जब थाईलैंड में था तो मैं एक रिसर्च असिस्टेंट ही था वहाँ के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में, तो एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी वो रह सकते हैं। तो कई सारे सीड टेक्नोलॉजिस्ट वो बन सकते हैं। संभावनाएं अनंत है, मैं ये असीमित है यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर भारत में, एक तो भारत एक कृषि प्रधान देश भी,
1: बिल्कुल,
0: तो इस कारण से भारत में कई सारे मतलब संभावनाएं बहुत है एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो।
1: आपने कहा फूड प्रोसेसिंग, तो बिल्कुल सारे जॉब है।
0: हाँ, जैसे आप देख लेंगे अभी जैसे बिस्किट्स में काजू आते हैं, तो वो काजू कहाँ से आ रहा है
1: जी, बिल्कुल,
0: उसको भी प्रोसेस करने के बाद आपको वो एग्रीकल्चर की देन है।
2: इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम युवानी से शगुफ्ता को दीजिए इजाजत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

चलते चलते अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम सुखविंदर और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है जानवर।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ऋषि श्रीवास्तव की आवाज में अभी आपने सुना भारत फिल्म का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है 1 2 का 4।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टैक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोडमैप। 1150 करोड़ का निवेश रोडमैप तैयार। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया, अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में सीआईएससीआई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित एआई नीति 2026-31 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में एआई आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
1: प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार या ये कहें कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना।
0: राज्य में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत बीएलओ द्वारा मतदाताओं से ई न्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान में 82% से अधिक मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इधर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है।
2: बीएलओ को जो कार्य करना चाहिए वो घर घर जाने में असमर्थ हैं। साथ ही साथ जिस बूथ के बीएलओ हैं वहीं पर आम मतदाता को बुला करके फॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आयोग का ये कहना है अगर बीएलओ पर सख्ती नहीं किया गया जो एसआईआर का जो सपना है हमको नहीं लगता है कि वो पूरा होता हुआ दिख रहा है।
0: ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में

0: लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिजली बिल देने से मुक्त हो सकते हैं और सोलर पैनल से उत्पादित बिजली बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से 10 किलोवाट तक का जो है सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ अपने घर पे लगाने का प्रोविजन है, जिसमें केंद्र सरकार से आपको 78,000 रूपए का सब्सिडी मिल जाता है। 78,000 का आपको सब्सिडी मिलता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा और तो दूसरा फायदा है कि जो पावर कट का झंझट जो है उससे भी आप मुक्त कर पाएंगे।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में आज जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए।
2: जिद पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। और यहाँ खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह की लगभग 66 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन कारोबारी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान यह पाया था कि वह कांके और नगड़ी अंचल में 66 एकड़ जमीन में से कुछ का फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया है। इससे पहले जांच के बाद कारोबारी सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और जांच जारी है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेश कृष्णन ने कहा कि ABVP का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
3: आज अगर देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है, मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हक और योगदान ABVP है। इसका सामाजिक फिलथान, इसका नेशनल कंट्रीब्यूशन और सामाजिक संरचना में उसी जो दंगता रही गहरे विचार से आज समाज का हर व्यक्ति हर पहलू विकास की ओर जा रहा है।
0: उधर हजारीबाग में ABVP के स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रांची महानगर कांग्रेस छात्रों की गूंज मुहिम के तहत 12 जुलाई को रांची में छात्र मैराथन का आयोजन करेगा। मोराबादी मैदान में आयोजित इस मैराथन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेंगे। मैराथन के संयोजक कुमार राजा ने अधिक से अधिक छात्रों को इसमें शामिल होने की अपील की है।
4: कैंपेन का मंशा ही यही है, उनको बताएं कि किस तरीके से उनके भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम चिंतित हैं और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर लीक मुक्त परीक्षा मिले। दूसरा है भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर है, हर छात्र को पता रहे कि किस समय पे कौन सी परीक्षा होने वाली है जिससे उसको भी नौकरी

0: धरती मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए सरायकेला खरसावां जिले के जेवियर स्कूल परिसर में आज से CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। दो दिवसीय इस खेल महाकुंभ में कुल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोड मैप। 1150 करोड़ का निवेश रोड मैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत। समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो जिले में एसआईआर के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र के मतदाता बीएलओ को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी से सहयोग करने की अपील की है।
2: हमारा उद्देश्य है कि जो भी बोकारो के नागरिक हैं, कोई भी नागरिक इसमें छूटे नहीं। सभी नागरिकों से भी अपील है कि बीएलओ को 1200 लोगों को तक जाना है। अगर वो आपके पास जा रहे हैं, स्पेशली मैं देख रहा हूँ बीएस सिटी के क्षेत्र में दो दो घंटे वेट करा रहे हैं, कह रहे हैं एक घंटे के बाद आइए, दो घंटे बाद आइए, ऐसा मत करिए। आप उनको इंतजार मत कराइए, वो अपना सब काम छोड़कर आपके पास आए हैं आपका मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए, उसको एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए।
1: बरसात के दिनों में हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है। वन पदाधिकारी संदीप सिंधे ने गोमिया प्रखंड के ग्रामीणों को खासकर रात में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।
3: बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 30 हाथियों के झुंड की होने की सूचना है। ये जो झुंड है अभी फिलहाल बड़की पुन्नू गोपो पालू कुसुमडी कानीडी एरिया में पाया गया है और इनके मूवमेंट की वजह से ये छितरा भी गया है और दो तीन अलग अलग झुंड में ये देखा जा रहा है। इस झुंड में बताते चले आपको कि 2 से 3 गर्भवती जो हथनियाँ हैं, इस वजह से ये झुंड आक्रामक होने की संभावना है। खास तौर पर इसी वजह से एहतियात रखने की हम आपके माध्यम से ही सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि झुंड के पास ना जाए, सेल्फी लेने पास में ना जाए और जो रात के समय में भी अपने घर से बाहर ना निकले। आप कोई वन क्षेत्र में कोई गाड़ी या वाहन लेकर, लाइट लेकर वहां ना जाए।
1: बोकारो स्टील सिटी के मोहन कुमार मंगलम में स्टेडियम में 18 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता होने जा रहा है। राष्ट्रीय तीरंदाज बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की महासचिव एंजेला सिंह ने कहा, इस प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
4: बोकारो में नेशनल हो जाना भी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इतना दिन के बाद हम लोग ने इस बार सर का थ्रू से ट्राइब सर ने बोले कि हम लोग बोकारो कर सकते हैं। उनके अर्जुन मुंडा जी और हमारा सेक्रेटरी पूर्णिमा महतो जी ने साथ दी, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग झारखंड और गौरव दीपिका जी जो आ ही रही है और जितना बेस्ट प्लेयर सब है, जो हम लोग अभी ओलंपिक में जितना अभी जो खेलने गए, वर्ल्ड कप में जो मेडल जितना लोग लाए हैं सब आ रहे हैं।
1: नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान

0: उपायुक्त अजय नाथ झा ने बच्चों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी है।
1: ऐसी चीजों के प्रलोभन से दूर रहते हुए उस समय इमोशनली स्ट्रांग होते हुए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए कि आप देश के एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है, उस दृष्टि से आप सोचते हुए कि हमको देश के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने परिवार समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, नशे के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एक ऐसी चीज है कि एक बार आपने गलती से हाँ कर दिया तो निकलने का रास्ता बहुत कठिन है। इसलिए स्पष्ट रूप से हमारा मैसेज है कि नशा के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हों।
0: पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान खुश हैं। जिले के किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
2: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

दिल का रिश्ता, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अनु मलिक और हेमा सरदेसाई की आवाज में। फिल्म का नाम है जानम समझा करो।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा ऑल टाइम हिट्स, बस कुछ ही देर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है जुदाई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म हम तुम में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार एक ऐसे फिल्म जगत के हर फन मौला कलाकार को लिए हुए है जिसने हीरो से लेकर खलनायक तक, चरित्र अभिनेता से लेकर हास्य भूमिकाओं तक, जवां से लेकर प्रौढ़ावस्था के अभिनय का सफर बड़ी ही जीवंतता से तय किया, जिनकी प्रतिभा का लोहा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से लेकर दर्शकों तक सभी मानते रहे हैं, मानते हैं।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
2: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

संजीव कुमार एक सफल अभिनेता के रूप में चिन्हे जाते हैं। कई प्रतिष्ठित अभिनय के पुरस्कारों के साथ संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म थी कोशिश और दस्तक

संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई को सूरत में हुआ। इनका मूल नाम हरिहर जरीवाला था। अपने फिल्मी नाम संजीव कुमार से इन्हें शोहरत मिली। थिएटर में अभिनय के साथ साथ फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से अभिनय की पढ़ाई के पश्चात संजीव कुमार को फिल्मालय की 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में पहला छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1964 में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो स्टारर आओ प्यार करे में संजीव कुमार ने एक छोटा सा और किरदार निभाया। संजीव कुमार की पहली नायक के रूप में फिल्म थी 1965 की निशान।

0: देखा जाए तो पर्दे के माध्यम से संजीव कुमार को 1968 की फिल्म मिली संघर्ष, जो H.S. रावल की फिल्म थी, और ये महाश्वेता देवी की कहानी का फिल्मी रूपांतरण था। संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
1: तुम कुंदन हो ना?
2: हाँ, तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए?
1: द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबतलाल का बेटा हूँ।
2: अरे भाई, तुम कब आए? कब आए?
1: कुछ देर पहले।
2: काफी आ गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई, जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई
1: पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है, शराब हम अकेले कैसे
2: ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे, मैं भी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ।
1: इंतजाम हो चुका है अमर सर।
2: वो नहीं होगा, पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों?
1: दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता?
2: नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आओ मेरे साथ।
1: घोड़े का ढाई बचो।
2: बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो।
1: वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा, बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें।
0: 1968 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। संजीव कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया था इसी फिल्म ने। इसी साल आशा पारेख और धर्मेंद्र स्टारर शिकार फिल्म आपने की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अब संजीव कुमार को फिल्मों में लीड रोल मिलने शुरू हो चुके थे। बात 1970 की फिल्म खिलौना की है। यही वो फिल्म है जिसने संजीव कुमार को एक स्टार बनाया। इस फिल्म में एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का किरदार बड़े ही विश्वसनीय ढंग से संजीव कुमार ने निभाया था।
1: आधी पे दूं तो फा मैं क्या?

0: कश का खैचा घर में बैठा, अब का तर्क इस्लाम किया।
1: सुभानअल्लाह, ए शायरी के खुदा, तूने बिल्कुल सच कहा है। ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद में।

प्रतिभा का जानदार प्रदर्शन किया था। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में इनके साथ थी रेहाना सुल्तान। ये वही किरदार थे जिसके लिए दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ।

1971 की अनुभव, 1972 की सीता और गीता और 1973 की मंचली, इन फिल्मों ने संजीव कुमार के अभिनय के सफर को सुहाना किया।

सन 1972 की परिचय और इसी वर्ष की फिल्म कोशिश ने इन्हें दूसरा फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिनेता के रूप में एक सम्मान दिलवाया। इन फिल्मों के निर्देशक थे गुलजार। अभिव्यक्ति और अभिनय का सर्वोच्च शिखर छू लेता है संजीव कुमार का ये अभिनय।

कहना ना होगा कि गुलजार और संजीव कुमार के साथ ने हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहतरीन फिल्मों के तोहफे दिए हैं। 1975 की आंधी, 1975 की ही मौसम और 1981 की अंगूर और 1982 की नमकीन ऐसी ही उम्दा फिल्में हैं।

संजीव कुमार के बोलने का अंदाज और किरदार को पूरी तरह से समझकर पर्दे पर उसे जिंदा करने की कला के सभी सिने प्रेमी कायल रहे हैं। संजीव कुमार ने पर्दे पर अपनी स्वयं की छवि से ज्यादा किरदार की छवि, उम्र और अनुभव का ख्याल रखा। तभी संजीव ने कई फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक यानी बुजुर्ग भूमिकाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद जिसने भी उन्हें पर्दे पर देखा, सराहा और पसंद किया। ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें

फिल्मों के हीरो की छवि को तोड़ते हुए कैरेक्टर की उम्र को पर्दे पर बड़ी ही सहजता और सफलता से आपने पर्दे पर उतारा है, जैसे फिल्म आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल, और अब शोले फिल्म को ही ले लेते हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार जया भादुड़ी के ससुर बने, जबकि कोशिश और अनामिका में जया जी इनकी नाई।

सहज सरल और हास्य प्रधान फिल्मों में भी संजीव कुमार खूब जंचे, जैसे मंचली, मनोरंजन, पति पत्नी और वो, अंगूर, लाखों की बात, और हाँ 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और दक्षता से अनेक किरदारों को एक ही फिल्म में अदा कर दिया, जो इनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है।

1977 में संजीव कुमार को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने पहली बार बंगाल के बाहर बनने वाली अपनी फिल्म में, जो कि फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की, जो संजीव कुमार की अभिनय क्षेत्र में प्रतिष्ठा और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शोले फिल्म के ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार पहली पसंद नहीं थे, क्या ये आपको पता है? बल्कि पसंद पहली थे धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र स्वयं वो भूमिका करना चाहते थे, पर निर्देशक रमेश सिप्पी के कहने पर धर्मेंद्र ने वीरू का प्रसिद्ध रोल किया और संजीव कुमार ने अविस्मरणीय ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका अदा की। सन 1976 की फिल्म आंधी और 1977 की अर्जुन पंडित के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। अपने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि कोशिश फिल्म में मेरे पास बोलने के संवाद नहीं थे, ना ही कोई कैमरे की पोजीशन ऐसी थी जिससे मेरे प्रदर्शन में कोई विशेष मदद मिलती। वो एक संपूर्ण रूप से एक कलाकार का दृश्य था। सामान्य रूप से इस तरह के दृश्य करने में बड़ी कठिनाई होती है जब निर्देशक पूरी तरह कलाकार पर निर्भर हो। अगर ये असफल होता तो किसी और की असफलता नहीं बल्कि मेरी ही असफलता गिनी जाती, पर मैं गुलजार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये दृश्य दिया जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया। गौरतलब है कि संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। अक्सर या तो वो अपने घर पर ही पार्टियां देते थे या फिर अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा दी गई पार्टियों में बड़े ही शौक से सम्मिलित हुआ करते थे। हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने अपनी गुजराती मीडियम से हो रही पढ़ाई अधूरी छोड़ बॉम्बे के इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया था। संजीव कुमार लेखक निर्देशक पीडी शिनॉय के शिष्य रहे। ये निर्माता निर्देशक और लेखक सावन कुमार ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर के दिनों में हरिहर जरीवाला को संजीव कुमार का नाम दिया। जब संजीव कुमार 20 वर्ष की आयु के ही थे, इन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदार निभाने आरंभ

आरंभ कर दिए थे, जैसे ऑर्थर मिलर के ऑल माय सन्स की रंगमंची प्रस्तुति में एक उम्रदराज व्यक्ति का रोल आपने किया, वहीं एके हंगल के नाटक में संजीव कुमार ने 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। निर्देशक अप्सी ईरानी की फिल्म राजा और रंक ही वो फिल्म थी जिसके माध्यम से संजीव कुमार लाइमलाइट में आए थे, और ये फिल्म इनके फिल्मी सफर की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है।

अपनी फिल्मी यात्रा के कई ठहराव और पड़ावों को पार करते हुए जब 1980 आया, उस वक्त तक संजीव कुमार ने अपने जीवन के प्रति अपनी दिनचर्या के संतुलन को खो दिया था। 1982 की विधाता में एक बार फिर दिलीप कुमार और संजीव कुमार के अभिनय की चर्चा चल पड़ी। वहीं 1983 की फिल्म हीरो में संजीव ने अपने अभिनय से दमदार उपस्थिति दर्ज की। फिर एकाएक 6 नवंबर 1985 को सिने दर्शकों का पसंदीदा चहेता अभिनय सम्राट असामयिक काल का ग्रास बन गया। संजीव कुमार अपनी पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी से लेकर उनकी मृत्यु पश्चात प्रदर्शित फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन तक हमेशा अपनी भूमिकाओं और अभिनय के लिए चर्चित रहे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार, जो केंद्रित था संजीव कुमार पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

शर्मिली फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अमित कुमार और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का।

एक मुसाफिर एक हसीना, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

भीगी पल की। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं माचिस फिल्म का गीत। आवाजें हैं हरिहरन और सुरेश वाडिकर के।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना दिल फिल्म का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आमिर खान और शान की आवाज में। फिल्म का नाम है तारी जमी पर।

श्रोताओं, अपनी ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार। और आज के हमारे फनकार कलाकार हैं आमिर खान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर

0: गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियो को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its